0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: প্রতিটো ঘরের বাণী আকাশবাণী, সকলোরে হৃদয়ের বাণী আকাশবাণী। আমি আগবাড়িছো আপোনালোকৰ সৈতে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গঢ়িবলৈ। মাত্র এটা ক্লিকতে আমার কেন্দ্রবোৰৰ অনুষ্ঠান লাইভ, সংগীত, নাটক, খেল আর প্রতিটো পলৰ নির্ভরযোগ্য বাতৰিৰ সৈতে আমার ওয়েবসাইট akashbani.gov.in। নতুন ভারত, নতুন আকাশবাণী।
1: বিদ্যার্থীর অনুষ্ঠান প্রাথমিকৰ পৰা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ভিত্তিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সমৃদ্ধ কৰা একমাত্র অনুষ্ঠান। প্ৰচাৰৰ সময় প্ৰতি সোম, বুধ আৰু শুক্ৰবাৰে বিয়লি 5:45।
2: GST से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह GST छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।

0: सबसे मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवेटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
2: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
3: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
1: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
4: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
5: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
6: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
7: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
8: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
9: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
7: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
10: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
7: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
11: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
12: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमेरिका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट एएफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
13: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1 रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़। गुड मॉर्निंग।

0: আকাশবাণীত বিজ্ঞাপন দিয়ক অগণিত শ্রোতার কাষ চাপক।
1: Our voice gets you heard everywhere.
0: বিজ্ঞাপন জনসাধারণক সজাগ কৰিবলৈ আৰু চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰাবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰটি হৈছে
1: 6900453528।
0: আকাশবাণী গুৱাহাটী, সর্বক্ষণ সর্বত্র আপোনাৰ সৈতে।
2: কাহিনী পঢ়ি আপুনি নিশ্চয় ভাল পায়, উপন্যাস বা গল্পৰ প্ৰতি আপোনাৰ নিশ্চয় আগ্ৰহ আছে। বিবিধ ভাৰতী গুৱাহাটীয়ে আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছে উপন্যাস পাঠৰ এটি মনোৰম অনুষ্ঠান। প্ৰতি পুৱা 9 বজাত এতিয়াৰ পৰা শুনিবলৈ পাব ধাৰাবাহিক উপন্যাস পাঠৰ অনুষ্ঠান।
3: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 12 বজাত হিন্দীত আৰু 12:05 ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
4: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই বিশাল শৰ্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
5: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंध गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एस्ट्रॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर मिस्ताल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस, फ्रांस से महेश सोपड़े।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबाझारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं।

सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सनी भाई, आज के इस प्रसारण में हाजिर हूं मैं ब्रजभुवन प्रसाद, आपके लिए ढेर सारे गीत और संगीत लेकर। लेकिन कार्यक्रम का आगाज करने से पहले प्रस्तुत है इसके संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आज के प्रसारण का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे दैनिक कार्यक्रम आज का गीत।

12:38 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम राग रंग। और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध किए गए गाने। 1:05 पर रिले किए जाएंगे अंग्रेजी में समाचार।

1:10 पर हम आपको सुनवाएंगे साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर छाया और 1:40 से प्रसारित किया जाएगा प्रादेशिक संगीत।

दिन के 2 बजे से बारी बारी से रिले किया जाएगा अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। और आज के प्रसारण का आखिरी कार्यक्रम होगा गीत रंगीले, जिसे आप सुनेंगे दिन के 2:30 बजे से। और इस कार्यक्रम के साथ ही आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का ये पहला गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म रेस से, आवाज आतिफ असलम की।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए गजनी फिल्म का गीत, जिसमें आवाजें हैं बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं आशिकी 2 फिल्म का गीत, जिसे गाया है तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह ने। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत है जीत गांगुली का।

सनक भाई, हमारा अगला कार्यक्रम है राग रंग, लेकिन यह कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए डालते हैं कल के कार्यक्रमों पर एक नजर। कल शुक्रवार है और हर रोज की तरह हमारा कार्यक्रम शुरू होगा 12:10 पर। 12:12 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

साढ़े 12 बजे हम आपको सुनवाएंगे दैनिक कार्यक्रम में आज का गीत 12:38 पर पेश किया जाएगा भक्ति मूलक गीतों पर आधारित कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। 1:05 पर रिले किए जाएंगे अंग्रेजी में समाचार।

1:40 से आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम तरन्नुम और दिन के 2 बजे से बारी बारी से रिले किया जाएगा अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। कल के प्रसारण का आखिरी कार्यक्रम होगा गीतिका, जिसे प्रसारित किया जाएगा दिन के 2:30 बजे से, और इसके साथ ही कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी, और आइए अब आपको सुनवाते हैं राग रंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध किए गए गाने। तो पहला गाना हमने लिया है फिल्म सरगम से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

सनी भाई, एक समय था जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का नाम बॉलीवुड में छाया रहा। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को अनेकों बेहतरीन संगीत दिए हैं, तो आइए उन्हीं में से एक फिल्म का आपको गीत सुनाते हैं मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाजों में। फिल्म का नाम है धर्मवीर।

और आइए अब आपको सुनाते हैं स्वर्ग से सुंदर फिल्म का गीत, जिसमें आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाई ऐप से हमारा यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन सकते हैं 529.1 मीटर पर।

सनी भाई, चांद हमेशा कौतूहल का विषय रहा है। चंदा मामा से लेकर चंद्रयान तक एक अनोखा सफर है। आसमान में मखमली अंधेरे के बीच एक चमकदार सा टुकड़ा मुस्कुरा रहा होता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी से कुछ कहे। लेकिन उसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत से लोग अनायास से उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। चांद सिर्फ एक उपग्रह नहीं है, हमारी धरती का वो इकलौता हम सफर है जिसने इंसानी सभ्यता को बदलते देखा है। बचपन में जब माँ कटोरी में दूध भात लेकर पीछे भागती थी, तो यही चांद चंदा मामा बनकर हमारे सामने आता था। उस वक्त चांद सिर्फ एक कहानी था, एक ख्वाब था। जैसे जैसे हम बड़े हुए, इस चांद के मायने बदल गए। बचपन का मामा जवानी में आकर महबूबा का चेहरा बन गया। खैर, आज हम स्वर छाया कार्यक्रम में इसी थीम पर आपको चंद गीत सुनवाने जा रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

शायर अक्सर अपनी महबूबा की तुलना चांद से करते हैं। किसी ने कहा चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, तो किसी ने किसी को चांद में भी दाग नजर आया। विज्ञान भले ही चांद के बारे में कुछ भी कहता हो, लेकिन इश्क के आगे विज्ञान की कहां चलती है। प्रेमियों ने तो उन दागों को भी चांद का हुस्न मान लिया।

आज चांद हमारे लिए विज्ञान, अध्यात्म, प्रेम और परंपरा का एक अनोखा संगम है। करवा चौथ का व्रत हो या ईद का दीदार, इस चांद के बिना हमारे त्योहार भी अधूरे हैं। यह चांद हमें सिखाता है कि चाहे जिंदगी में कितना भी अंधेरा क्यों न हो, अपनी चमक कभी नहीं खोनी चाहिए।

चांद सिर्फ भावनाओं का समंदर नहीं है, यह इंसानी हौसलों की वो जमीन है जहां हमने अपने सपनों को सच होते देखा है। जिस चांद को हम कभी जमीन से देखते थे, आज हमारे चंद्रयान ने उसकी सतह को छुआ है। चाहे जो भी हो, चांद के प्रति हमारा नजरिया आज भी कुछ अलग है। उसे महबूब की शक्ल में ही हम देखते हैं।

चांद की रातें हमेशा इंसान के दिल को आकर्षित करती रही हैं। इसी आकर्षण को शब्दों में पिरो कर उसे गीत की शक्ल में पेश किया जाता है। तो आइए आपको छोड़ जाता हूं इस खूबसूरत नगमे के साथ।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब प्रस्तुत है प्रादेशिक संगीत। तो आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं राजस्थानी फिल्म माता रानी भटियानी का यह गीत। आवाजें हैं सोनू निगम और सारिका कपूर की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल है, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ओआरएस, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
3: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू। शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: समाचार के बाद एक बार फिर आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।

0: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज का अंक बहुत स्पेशल, बहुत खास इसलिए क्योंकि आज हम एक स्पेशल डिजीज की बात करेंगे और उस डिजीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम पहले भी कार्यक्रम कर चुके हैं और हमारे जो एक्सपर्ट्स आज स्टूडियो में मौजूद हैं वो पहले भी आपसे मुखातिब हो चुके हैं, इस विषय पर भी वो बात कर चुके हैं। तो हम बता दें आपको सीधे से कि आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ऑटिज्म, दोनों में से जो भी आप इसे समझें वो हमारे एक्सपर्ट्स आपको समझाएंगे कि ये किस तरह की डिजीज है और इससे कैसे निपटा जाए, किस तरह से इसका उपचार, निदान, लक्षण, सारी बातें हम कोशिश करेंगे यहाँ पर आपके लिए जानने की। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे आज के रेडियो डॉक्टर से। हमारे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर शेफाली गुलाटी। आप ऑटिज्म एक्सपर्ट हैं, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एम्स न्यू दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है मैम।
1: धन्यवाद, नमस्कार सबको।
0: हमारे दूसरे एक्सपर्ट योगेश कुमार, आप साइकोलॉजिस्ट हैं और ऑटिज्म पर आपका बहुत काम है। आप बच्चों के साथ जो ऑटिस्टिक बच्चे या साथ साथ न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स बच्चों के होती है उनकी रिहैबिलिटेशन पर बहुत काम कर रहे हैं। आपका रिसर्च बहुत तगड़ा है। तो आज बिल्कुल हमारी उम्मीद है कि योगेश कुमार और डॉक्टर शेफाली के माध्यम से हम जो भी इन्फॉर्मेशन अपने श्रोताओं तक पहुंचाएंगे उसका लाभ हमारे श्रोता जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
0: और बस कार्यक्रम का आगाज हम कर चुके हैं, हमें इंतजार है कि आप प्रश्न करें, इसमें भाग लें। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते चलेंगे और अपने जो गेस्ट हैं उनको एक बार कहेंगे कि हमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। पर पहले एक प्यारा सा गीत, उसका एक छोटा सा टुकड़ा हम अपने श्रोताओं के साथ सुन लें।

0: डेवलपमेंटल अवस्था है जिसके अंदर बच्चों में सामाजिक अभाव, सोशल इंटरेक्शन होती है और संचार कम्युनिकेशन होते हैं उसमें गुणात्मक हानि होती है, और उसके अंदर कुछ उनके पास कोई दोहरावनीय व्यवहार होते हैं, फिक्स्ड उनकी रुचिज होती है, और कई बार होता है कि उनको खिलौनों को लाइन में लगाना है, स्कूल को एक ही रास्ते से जाना है, और दूसरा इनमें सेंसरी इश्यूज भी होते हैं, कभी जैसे कोई साबुन वगैरह को स्मेल करेंगे, आसपास आवाज नहीं आ रही फिर भी कान पे हाथ लगाएंगे, तो बेसिकली सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन, सामाजिक हावभाव और संचार, और बेसिकली कुछ फिक्स्ड उनकी रुचि और उनके जो रेपिटेटिव जो दोहरावनीय व्यवहार है, ये सब मिला के ऑटिज्म न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बताया जाता है।
1: जी जी,
2: देखिए अगर हम ऑटिज्म का शाब्दिक अर्थ ले तो इसका अर्थ होता है आत्म केंद्रित स्वलीनता। तो ऐसे बच्चे जो है दूसरों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं करते, इनकी एक अपनी दुनिया होती है और एक ही रिजिड रूटीन होता है, और ये इतने रिजिड होते हैं कि अगर इनको स्पेसिफिक कोई खाना अच्छा लगता है तो लगातार उसी की डिमांड करते हैं कि वो खाने में वही पसंद करेंगे, और ये किसी भी प्रकार के जो परिवर्तन है उसका बहुत प्रतिशोध करते हैं। अच्छा। इनको चेंजेस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये सारे जो है ऑटिस्टिक बच्चों के लक्षण होते हैं, और इसमें सबसे जो मेन बात है कि दे फोकस ऑन द पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स रादर देन द होल। जैसे एक अगर एक खिलौना है, टॉय है, अगर एक उसका पहिया है तो वो पूरे टॉय से खेलना पसंद नहीं करेंगे, उनका जो ध्यान जो केंद्रित होगा उस व्हील को लेकर होगा और इसको ही स्पिन करते रहेंगे
1: जी।
2: तो ये सारी चीजें जो है ऑटिस्टिक बच्चों में पाई जाती है, और सबसे मेन जो चीज है कि लैक ऑफ एम्पैथी, जो समानुभूति की कमी होती है, ये अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा अटैच नहीं हो पाते हैं, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं
1: जी।
2: और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि जो ऑटिज्म वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लियो कनेर, एक अमेरिकन चाइल्ड साइकेट्रिस्ट है, इन्होंने 1943 में ऑटिज्म को डिस्क्राइब किया।
1: डॉक्टर शेफाली, आप कुछ कहना चाह रही थी?
0: हाँ, ये कहना चाह रही हूँ कि दो बच्चे जो उनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है वो भिन्न है, हर जो लक्षण है हर बच्चे में नहीं होते, और हर एक की सिवियरिटी जो है, गंभीरता हर एक में अलग अलग होती है।
1: बिल्कुल
0: ना, जैसे अभी आपको बताया योगेश जी ने, तो उसमें हम लोग आप बात कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के आईज टू आई कॉन्टेक्ट लगा रहे हैं, जैसे इन्होंने स्पेशली बताया व्हील ऑफ अ ट्रक होता है, उनको जनरली स्पिनिंग चीजें पसंद है।
1: अच्छा,
0: वो अगर आप बोलोगे ना लड़कियों को यू नो बारबी डॉल पसंद है या लड़कों को रेसिंग कार है, पर जैसे बताया कि इसमें व्हील पसंद है और जनरली स्पिनिंग वाले, पर ये हमें समझना है कि हर बच्चा भिन्न है, और कई बार होता है कि वो अपने मन में अपने आप में लाइक बच्चों से पेरेंट्स से पूछो तो हाँ दूसरों के बच्चों के साथ खेलता है लेकिन दूसरों के बच्चों के बीच में अपने आप ही खेल रहा है, तो जो स्वलीनता वाली बात आ रही थी पर जो इसलिए देखना है वो जनरली मिक्सअप नहीं होना चाह रहा, पर ये जो चीजें हैं अगर आप उसको आवाज लगाओ तो वो प्रिटेंड करेगा कि आवाज नहीं सुनी, पर सुनने में प्रॉब्लम नहीं है, सुनवाई सही है, लेकिन ये सारी चीजें ना किसी भी बच्चे को टेम्पर टैंट्रम से भी हो सकती है, तो हमें समझना है कि ये एक न्यूरो डाइवर्सिटी है, और जैसे हमारी पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, हर एक में लक्षण अलग अलग होते हैं, और हर एक हमें भी बताना है कि ये पहले एक जमाने में होता था कि नॉर्मल अब नॉर्मल, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, फिर हो गया न्यूरोटिपिकल और स्पेशल नीड्स, अब वो भी खत्म हो गया, क्योंकि हम जब स्कूलों में खुद भी पढ़ते थे तो हमें पता है कि चार पांच लोग मर मर के पास होते थे
1: जी,
0: और चार पांच टॉपर ही थे, वो लड़ते रहते थे फर्स्ट सेकंड पोजीशन के लिए, और बाकी मोस्टली बीच में आते थे, तो हम सबको एक्सेप्ट करते हैं एज अ नॉर्मल डाइवर्सिटी, तो भी ये कहा जा रहा है तो हम स्पेशल नीड्स वगैरह भी ना बोल के इसको एक न्यूरो डाइवर्सिटी करके माने, और जो भी हम लक्षण ये जो बताए इतने सारे बताए और भी हैं और लक्षण, तो वो एक तो हर एक में नहीं होते, पर ये देखना है पेरेंट्स को कि अगर ये मोस्ट ऑफ द टाइम अधिकतर समय ऐसे लक्षण हो तो चिंता का विषय है, लेकिन किसी भी बच्चे में ये कभी कभार तो हो ही सकता है
1: जी। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आपने मेंशन करी, और एक चीज और जो आपने अभी अभी बोली कि हर कोई अलग है, हर इंसान अलग है, हम सिर्फ बच्चे की बात ना करें, हर इंसान अलग है, उसके कुछ प्लस हैं कुछ माइनस हैं, हम उसके साथ जीते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक टोटली इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, मुझे ये समझ में आता है आपकी बात से कि वो भी पूरे राइट्स रखते हैं, लेट अस इंक्लूड देम इन आवर सोसाइटी एंड
0: दे आर पार्ट ऑफ अस, आई मीन वी आर नॉट गोइंग टू, मतलब वी आर नॉट टू से कि क्योंकि हम लोग सब लोग हम लोग जब जो फेल होने वाले और टॉपर सब लोगों को इकट्ठा लेके चलते हैं, तो ये सारे भी थोड़ी सी सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन के अंदर उनके सोशलाइजेशन में उसके सामाजिक जो हमारे अपने एक्सेप्टेबल नॉर्म्स हैं
1: exactly.
0: उसके हिसाब से वो नहीं फिट बैठ रहे, तो डजंट मीन कि वो हटके हैं, और हर इंसान का हर जीव का equal right to life,
1: yes,
0: a equal right to dignified life, equal right to education है. तो कोई किसी पे

0: इंसान नहीं कर रहा है, एवरीबडी इज हैविंग देयर राइट.
1: बिल्कुल. और इसमें सोसाइटी का रोल, पीयर्स का रोल, टीचर्स का रोल, पेरेंट्स का रोल, रिलेटिव्स का रोल बहुत अहम हो जाता है जब इस तरह से हम इक्वल सोसाइटी की बात करते हैं. वो हम बाद में बात करेंगे. लक्षण आपने बताए, मुझे ये थोड़ा सा समझना है अपने श्रोताओं के लिए, क्या कारण हो जाता है जिसमें ऑटिज्म हो जाता है? क्या ये जेनेटिक है या ये ऑक्यूपाइड है या एनवायरमेंटल है? व्हाट आर द फैक्टर्स लीडिंग टू इट?
0: एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. ऑटिज्म 4.5 गुना लड़कों में ज्यादा पाया जाता है लड़कियों से. ऑटिज्म का जो प्रेवलेंस है पिछले 2 डेकेड से बहुत ज्यादा बढ़ गया है. यूएसए में 312% उसका जंप हुआ है इन द लास्ट 20 ईयर्स. तो हमारा इंडिया में हमने जो अनुसंधान किया था 2011 में, इंक्लिन स्टडी किया था, उसमें हमारा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पूरे इंडिया का हमने लिया था, पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल बाय साइज में 1 in 89 था फिगर ऑफ 2011 डेटा. राइट. तो प्रेवलेंस बढ़ रहा है. अब कारण क्यों है, इट इज नॉट वेरी क्लियर कि कारण क्यों है. दे कैन बी सम अनुवांशिक यानी जेनेटिक कारण हो सकते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल जो हमारे एनवायरमेंट में है, और कुछ जो है एपिजेनेटिक. क्योंकि मैं जो पैदा हुई हूँ, मेरे को जीन्स तो जो मिली है तो मेरे को आधी मम्मी आधी डैडी से मिली, उसको तो कुछ कर नहीं सकते. पर उसका एक्सप्रेशन जो होता है उसको इन्वायरमेंटल के फैक्टर्स को उसको इफेक्ट करते हैं, विच आर कॉल्ड एपिजेनेटिक. तो अब अगर आप जेनेटिक वाले कारण में लेंगे, इनमें कुछ कई सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड देखा गया है, जैसे डाउन सिंड्रोम, ट्यूबरस क्लोरोसिस, न्यूरोफाइब्रोमोटिस वगैरह बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं. प्लस इनके अंदर कुछ पर्टिकुलर काफी सारे जीन्स हैं जिनके अंदर पाए गए हैं कुछ कॉपी नंबर वेरिएशन. पर अभी भी अनुसंधान जारी है. हमारे यहां भी सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन एडवांस रिसर्च ऑन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स पे भी ये शोध जारी है पिछले 7 साल से, कि समझने के लिए कि क्या अनुवांशिक कारण है. इन्वायरमेंट कारण बहुत चौंकाने देने वाले हैं. एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एक्सपोजर टू द प्रेग्नेंट मदर्स, एयर पोल्यूशन एक्सपोजर इन द चाइल्ड, देन पेस्टिसाइड एक्सपोजर. हमारे खान पान में इतना पेस्टिसाइड कंटामिनेशन है. फादर्स एडवांस्ड एज, मदर्स एडवांस एज, हमने फादर्स के स्पर्म्स के एपिजेनोम का हमने स्टडी किया तो मिथाइलेशन डिफेक्ट मिले. हम सबकी तो हमारी सारी लाइफ स्ट्रेस से भरी है. तो स्ट्रेसफुल लाइफ्स इवन ऑफ फादर्स हैव बीन शोन. तो ये सारी चीजें एनवायरमेंट में है, और जो एनवायरमेंट जो जेनेटिक एक्सप्रेशन को इफेक्ट करेगा, आई फील वो सबसे ज्यादा गेम चेंजर होगा. बिकॉज हम एनवायरमेंट को जब चेंज कर देंगे तो वी कैन इफेक्ट ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स.
1: वेरी राइट.
2: हाँ, जैसे कारण आपने बताया कि एनवायरमेंटल रहे, तो इसमें मैं कुछ एड ऑन करना चाहूंगा. अब जैसे आजकल स्क्रीन टाइम का बहुत चर्चा में है, और इसमें बहुत रिसर्च भी हो रही है कि जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम, इवन नॉर्मल बच्चे भी अगर उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा है तो मैंने देखा गया है उनमें ADHD या एग्रेशन की शिकायत बहुत हो जाती है. ऐसे ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं, मेरा ये मानना है कि जो 2-3 साल तक बच्चों का 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए. अगर 2-3 साल के बच्चे हैं, और 3 साल से अगर बड़े बच्चे हैं, उनका भी जो स्क्रीन एक्सपोजर होना चाहिए अंडर द पेरेंट्स गाइडेंस होना चाहिए, कि जिससे ये जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कम हो रही है और उनमें जो इरिटेबिलिटी सिंड्रोम आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना आए. और दूसरे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ये भी देखा गया है कि बच्चे का अगर वेट कम है और प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, ये भी जो है एक ऑटिज्म का कारण बनता है. और सबसे जो पहले जो सबसे जरूरी एक है इसमें, वो है प्रीनेटल हाइपोक्सिया. प्रीनेटल हाइपोक्सिया भी कई कारणों से होता है, कि क्रॉनिक मैटरनल इलनेस है, अगर हाई एल्टीट्यूड प्रेगनेंसी है, इससे भी जो हाइपोक्सिया हो सकता है. और अगर जो है माता जो है, अगर मदर जो है बच्चे की, अगर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है या सिगरेट्स पीती है, तो ऐसे बच्चों में संभावना जो ऑटिज्म की बढ़ जाती है.
1: क्या ये फैमिली इसमें भी रन करता है?
2: जी जी, मैं अराउंड 80% ऑफ द ऑटिस्टिक केसेस कैन बी लिंक्ड टू द इनहेरिटेटिक जेनेटिक म्यूटेशंस.
1: आप कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर शेफाली?
0: इसके अंदर एनवायरमेंटल कारण बहुत है, उनपे बहुत शोध हो रहा है. आई डोंट जो कर रहे हैं बहुत सारा, इवन डायबिटीज इन मदर्स बहुत सारा चल रहा है, वो अभी शोध चल रहा है. लेकिन ये जो हेरिटेबिलिटी की बात कहेंगे, तो अगर आप देखेंगे 2 बच्चे ट्विंस हैं, अगर वो सिमिलर ट्विंस हैं, तो उसमें 70-80% कॉन्कॉर्डेंस है, और अगर आइडेंटिकल नहीं है तो 30-30% के करीब. अगर एक फैमिली में किसी बच्चे को ऑटिज्म है और वो लड़का है, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में रिकरेंस रिस्क 4% होता है, 4% ओवरऑल. जो सारी स्टडीज का कुलेट करके दिया है, लेकिन एक लड़की को अगर ऑटिज्म है, लड़की है तो कम लोगों लड़कियों को होता है ऑटिज्म, तो उसमें रिकरेंस रिस्क 7% है।
1: अच्छा,
0: अब आप बोलोगे रिकरेंस रिस्क क्यों है, क्योंकि एक लड़की में मैनिफेस्ट होने के लिए जो जेनेटिक डिफेक्ट का लोड है वो थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसलिए रिकरेंस ज्यादा होता है। अगर दो बच्चों के अंदर फैमिली में ऑटिज्म है तो अगली प्रेगनेंसी में रिस्क 30-35% होता है। एडिशनली एक इंटरेस्टिंग चीज है कि 17.5% फैमिलीज में आपको हिस्ट्री ऑफ ऑटिज्म नहीं मिलेगा, लेकिन हिस्ट्री ऑफ यू नो हैविंग सम बिहेवियर के इश्यूज, लाइक हमारे हम लोग देखते हैं कहीं बहुत गुस्से होते हैं, कोई मिलते नहीं है, यू नो, तो ऐसे 17.5% में बिहेवियर इश्यूज और पर्सनालिटी इश्यूज फैमिली में होते हैं। सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, और अभी भी ये पहेली है, इस पहेली पे बहुत ज्यादा शोज हो रहा है, पर एक चीज बता दूंगी, वैक्सीनेशन से कोई प्रूवन रोल नहीं है, वेदर कोई स्पेसिफिक वैक्सीन या वैक्सीन प्रिजर्वेटिव, तो वैक्सीनेशन के साथ कोई इसका नहीं है। स्क्रीन टाइम का जो बताया बिल्कुल एब्सोल्युटली है, स्क्रीन टाइम हैज टू बी लिमिटेड, बट ऑब्वियसली बिकॉज पेरेंट्स क्या कर रहे थे, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बच्चे को मोबाइल पढ़ा दिया ताकि वो शांत रह जाए।
2: और इसमें एक नई रिसर्च निकल के आई है कि आजकल जो सिम्टम्स है एसोसिएटेड विद द सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर इन द ऑटिस्टिक चाइल्ड, और जो एंग्जाइटी है और जो अटेंशन डेफिशिएंसी है वो हाई लेवल ऑफ ग्लूटामेट से भी जुड़ी हुई है, जो ब्रेन में हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, और इसका हम लेवल हम कम कर सकते हैं अगर हम विटामिन सी लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं, और ये ऑटिस्टिक बच्चे अगर थोड़ा योगा करते हैं, उनका इंक्लिनेशन अगर पेरेंट्स या स्पेशल एजुकेटर जो है योगा की तरफ इवॉल्व करते हैं, तो इनमें जो है ग्लूटामेट का जो लेवल है वो कम किया जा सकता है।
1: जी जी, तो हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म पर। एक और प्रश्न, जब डॉक्टर शेफाली आप बता रही थी बच्चों में जो प्रेवलेंस कैसे बढ़ती है, तो मेरे एक प्रश्न दिमाग में आया कि किसी का एक बच्चा ऑटिस्टिक हुआ है तो कितने चांसेस हैं कि दूसरा बच्चा भी ऑटिस्टिक होगा।
0: अभी मैंने बोला अगर वो लड़की है हाँ, तो 7% जनरल रिस्क है, अगर लड़का है तो 4%।
1: अच्छा,
0: लेकिन एक चीज देखना है कि अगर उसको डाउन सिंड्रोम था, सपोज एसोसिएटेड कोई आपको मिल रहा है, डाउन सिंड्रोम दिख रहा है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस दिख रहा है, तो वो उसके साथ एसोसिएटेड है, तो फिर हम दोनों चीजें देखनी पड़ेगी, उस डाउन सिंड्रोम का प्रेवलेंस के लिए भी जेनेटिक काउंसलिंग होगी और उसके लिए उसके अंदर। पर वो अदरवाइज 4% and 7% इज एक और चीज था, योगा मेंशन हुआ है।
1: हाँ,
0: योगा मोस्टली स्टडीज जो है मैंने उसमें काफी निकाल के रिसर्च देखा कि हमारे इंडिया से एक स्टडी थी और विदेशों से बहुत सारी स्टडी थी, विच इज अनफॉर्चुनेट। हम भी अभी एक स्टडी शुरू करने जा रहे हैं, कीपिंग इन माइंड देयर इज एन एविडेंस कि आप उनको योगा सिखा सकते हैं, बिकॉज हम लोग ये नहीं कि जितना उसके अंदर अपने आप ही समझेंगे, तो जो थेरेपिस्ट है उनको, जो योगा के थेरेपिस्ट है उनको पहले बीमारी समझानी पड़ेगी, फिर जो हमारे को उसके टास्क को उसको स्मॉल स्मॉल करके ब्रेक करके योगा कराना, और उसको स्केचेस वगैरह के साथ, दे आर वेज टू टीच चिल्ड्रन विद ऑटिज्म योगा, एंड योगा हैज शोन बेनिफिशियल रिजल्ट्स। आई थिंक हमें इंडिया में और रिसर्च करना चाहिए।
2: यहाँ ऐसा होता है कि यहाँ पर कलेक्टिव जो इंटरवेंशन है वो जरूरी है, एज ए टीम अगर काम करता है, स्पेशल एजुकेटर है, पेरेंट्स है, योगा थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, और योगा पे आजकल बहुत रिसर्च हो रही है मैडम, क्योंकि हमारा जो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम है इतना पावरफुल बनाते हैं, जो कि उसमें वीक होता है ऑटिस्टिक बच्चों में।
1: तो मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगी कि हमारे जो गेस्ट योगेश, जिनकी आवाज आप सुन रहे हैं, ही इज अ योगा टीचर थेरेपिस्ट।
2: मैं ये मानता हूँ कि जो ज्यादा जो सीवियर केसेस हैं उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है, पर जो मॉडरेट ऑटिज्म है, माइल्ड ऑटिज्म है, हमें योगा करनी चाहिए, बच्चों को योगा के लिए प्रेरित करना चाहिए। और मैं जब योगा करा रहा हूँ, साथ साथ म्यूजिक थेरेपी भी करा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है।
1: जी जी, तो आप उसको एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हमारे श्रोता जो है वो फोन लाइन पर है, वेट कर रहे हैं काफी देर से, उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। हेलो
3: हेलो
1: जी, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में।
3: शालिनी मित्तल जी को, रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार।
1: जी चट्ठा जी नमस्कार,
3: और हमारे डॉक्टर साहबान को मेरा सादर प्रणाम।
1: नमस्कार,
3: मेरा सवाल ये है जी, ऑटिज्म जो है वो बुजुर्गों में उनको इग्नोर करने से या अकेलापन होने से भी हो सकता है क्या, कृपया बताने का कष्ट करें।
0: नहीं, ऑटिज्म ना एक न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है जो कि शुरू में ही होती है, लेकिन कई बार कई लोगों को पकड़ में नहीं आती है, हमें बाद में ओल्ड एज मतलब ओल्डर में जब एडल्ट हो जाते हैं, बड़े में भी आपको पहले नहीं पता होगा, लेकिन वो बाद में हो सकती है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो जो है वो अलग है, वो एडल्ट न्यूरोलॉजी के अंदर उसमें होता है, उनमें चीजें जो एडल्ट में आती है उसमें बाद में जाके डिमेंशिया होता है, अल्जाइमर्स और पार्किंसन, वो जो है ओल्ड एज के इश्यूज वो आते हैं, तो वो ये ऑटिज्म नहीं है कि वो बाद में आएगी, जो ऑटिज्म है वो शुरू में आती है, कई बार मिस हो जाती है पकड़ में आने, और एडल्टहुड में हो, पर ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में जाके हो, पर वो वाली जो डिमेंशिया है और पार्किंसनिज्म वगैरह है वो सब हो सकते।
1: तो हम आगे एक बात करेंगे कि इसको कैसे पकड़ना है और सही तरीके से, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि मिस हो जाती है और कई बार

वो बाद में मैनिफेस्ट होती है, तो कैसे इसका निदान, कैसे टेस्ट किए जाते हैं, ये हम बात करेंगे। पर इससे पहले हम एक गीत सुन लेते हैं, यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, फिर लौट कर आएंगे। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो 102.6 पर। साथ ही साथ आप इसे सुन रहे हैं हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। हमारे साथ हमारे विशेष गेस्ट हमारे रेडियो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर शेफाली गुलाटी और योगेश कुमार, और हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म पर। हमारे एक लिसनर है जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो
2: जी, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से।
1: जी राजेंद्र जी, आपका कोई प्रश्न है? आज हम ऑटिज्म पर बात कर रहे हैं।
2: जी, पहले तो आप तीनों साहिबान को तहे दिल से नमस्कार और आभार।
1: जी नमस्कार।
2: पहला सवाल मेरा है कि किसी शख्स को डिटेक्ट हो जाता है कि उसको जो ऑटिज्म है, तो क्या इसका घरेलू स्तर पर योगा, मेडिटेशन या फिर डाइट के तहत जैसे एलोवेरा, गिलोई और आंवला और केसर, इसका से इसका ट्रीटमेंट संभव है घरेलू स्तर पर? और अगर अस्पताल आना ही पड़े किसी वजह से मजबूरी में, तो क्या मेडिसिन और ये काउंसिल से इसकी रिकवरी हो जाती है या फिर कोई मतलब सर्जरी ही करनी पड़ती है? ये दो सवाल हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। डॉक्टर शेफाली बता रही हैं, आपके प्रश्न का जवाब दे रही हैं।
3: हाँ जी, पहले का है ट्रीटमेंट के लिए ना, जो बेसिकली अभी ऑटिज्म का जो मेन स्टे ट्रीटमेंट बिहेवियर इंटरवेंशन होता है, जो बहुत सारी बिहेवियर थेरेपीज होती है, ABA, स्ट्रक्चर टीचिंग, सेंसरी इंडिकेशन वगैरह, जो इंडिविजुअलाइज किया जाता है बच्चों के लिए, और किसी जगह किसी चीजों में उनको दवाई दी जाती है। लेकिन जो दवाई दी जाती है उसके अंदर जो होता है, अगर उनको मिर्गी पड़ रही है उसका, या सोने में प्रॉब्लम आ रही है, स्लीप ऑनसेट लेटेंसी बोलते हैं उसमें, या बहुत चंचल है, या बहुत अग्रेसिव हो रहा है, गुस्सेल हो रहा है, इन सब सिचुएशन में मेडिसिन दी जाती है फॉर सम टाइम। पर मेन स्टे वो इंडिविजुअलाइज जो बिहेवियर

0: बनाते हैं प्लान, साथ में ऑक्यूपेशनल थेरेपी यू नो, और ये आपका जो स्पेशल एजुकेटर और साइकोलॉजिस्ट वगैरह मिलके आपका इमीडिएट प्लान होता है। दूसरे एस्पेक्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। अप टू 80% जो हमारे ऑटिज्म के पेरेंट्स होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन खुद ही ट्राई करते हैं इंटरनेट से देख के, जिसमें बहुत सारे होते हैं जिसमें आप लोगों ने नाम लिए हैं। तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री वाले हैं जिसके अंदर कई बार नुकसानदायक भी हो सकते हैं, जैसे कि कीलेटिंग एजेंट्स हैं, हैवी मेटल्स पे हमारा भी अनुसंधान चल रहा है जब, लेकिन हैवी मेटल्स जब हाई हैं तभी देनी है दवाई, उनकी दवाई वैसे ही दे दी तो उस पर नुकसान हो जाता है। तो वैसे कुछ वो लोग नुकसानदेह हैं, कुछ चीजों पे अभी अनुसंधान चल रहा है जिसमें पोटेंशियल बेनिफिट है, जैसे योगा है, म्यूजिक थेरेपी है जो हम लोग म्यूजिक थेरेपी भी कर रहे हैं, और साथ में ग्लूटेन फ्री केसिन फ्री डाइट है, स्पेसिफिक डाइट है आपका, ऐसे एलोवेरा या कोई ऐसी चीज करने के लिए नहीं। क्योंकि मेरे पास कई बार पेरेंट्स आते हैं वो चीनी बंद कर दिया, किसी ने दूध बंद कर दिया, किसी ने सिर्फ आटा बंद कर दिया, वो सब अलग अलग करते हैं। वी शुड नॉट डू लाइक दैट। हमारा भी साइंटिफिक बेसिस है, ग्लूटेन फ्री केसिन फ्री डाइट का ट्रायल किया है हमने और उसमें हमारे अभी रिजल्ट्स फाइनल कर रहे हैं और हमें फायदा लग रहा है, तो होगा तो वो प्रॉपर डाइट लेना है। तो ऐसे छोटा मोटा चीजें में नहीं है, और आप नेट में पढ़ेंगे ऑटिज्म डालेंगे तो 7 बिलियन हिट्स हैं। तो अभी ऐसा है आपको समझना है, अपने डॉक्टर से थेरेपिस्ट सबसे मिले जिनका आपका प्लान बनाएगा, और डॉक्टर्स विल ऑल्सो गाइड यू कि जो उनसे भी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के ऊपर, क्योंकि अभी वो शुरू हुआ ब्रोकली के ऊपर सल्फोरोफेन है, उसका भी अभी एविडेंस नहीं है, आप समझ रहे हैं पूरा एविडेंस नहीं है, तो इसलिए जब तक पूरी एविडेंस नहीं आती है, और कई सप्लीमेंट्स के ऊपर भी कंप्लीट एविडेंस नहीं है, तो आप ऐसे ही मत ट्राई करिए। और एक ध्यान रखिए, आप कई बार सोचते हैं विटामिंस हैं लिए जाओ कोई नुकसान नहीं होगा, पर हम समझिए कि हमारे जो विटामिंस हम लेते हैं, जैसे विटामिन सी है वो तो यूरिन में चला जाता है बिकॉज वाटर सॉल्युबल है, विटामिन डी ई वगैरह जो है दे आर फैट सॉल्युबल, तो एक्स्ट्रा लेंगे तो उसकी टॉक्सिसिटीज हो जाती है। तो अपने आप ही समझ के इवन विटामिंस के वगैरह के नाम से ऐसे नहीं लिए, इन सब क्यूरेटिव नहीं है।
1: जी, और बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर शेफाली यहां बोल रही है, कोई भी चीज को सेल्फ डायग्नोसिस ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, यह हार्मफुल भी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब मैं यहां ये जानना चाहूंगी कि एक आपकी जो मुझे पता है एक साइट है या कोई नंबर्स हैं जहां पर एम्स की जो अप्रूव्ड चीजें हैं वो आप डालते हैं, वो मुझे अगर श्रोताओं के साथ साझा कर लेंगे तो।
0: एक हमारी वेबसाइट है www.ped मतलब पीड मतलब बच्चा, NEURO मतलब न्यूरो मतलब ब्रेन, पीड न्यूरो एम्स मतलब एम्स, पीईडी NEURO AIIMS.org, उसमें जाएंगे तो उसमें पेरेंट्स कॉर्नर का सेक्शन है, उसमें ऑटिज्म की काफी सारी किताबें हैं और उसके अंदर कई वीडियोस हैं आप लोगों के लिए। और एक हमारी हेल्पलाइन नंबर है 1800 11 3 7 6 1800 11 7 7 6। तो उसमें हमारी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी नर्सेज होते हैं जो 13 अप्रैल 2018 से हमारी ये 24 घंटे टोल फ्री नंबर चल रहा है, नॉट ओनली फॉर ऑटिज्म, फॉर ऑल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो उसमें आपको सपोर्ट मिल सकता है। और हमें समझना है कि इसके अंदर जो है जो डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डायग्नोसिस के लिए कोई आपको फैंसी टेस्ट नहीं चाहिए। मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं, 1000 किस्म के टेस्ट करा के आते हैं, कुछ टेस्ट इंडिया में कराते हैं, कुछ बाहर भेज के कराते हैं। फॉर डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म क्लिनिकल डायग्नोसिस है, जिसमें हम लोगों ने सोशल कल्चरल सेंसिटिव टूल्स बनाए हैं जो कि हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से बनाए हैं। एक बच्चा अगर अमेरिका में पैदा हुआ है, हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो डिफरेंट है बलिस्मत हमारी फैमिली में। एक एग्जाम्पल दूंगी, एक स्लीप क्वेश्चनेयर है हमने यूज किया, CSHQ स्लीप चाइल्ड्रन स्लीप हैबिट क्वेश्चनेयर, उसमें एक सवाल है, बच्चा अगर पेरेंट्स के साथ सोता है तो वो अबनॉर्मल माना गया है, उसकी स्कोरिंग वैसी हुई हुई
1: अच्छा।
0: है। हमारे बच्चे तो 99% अपने साथ ही सोते हैं, तो आपको ये सारे सोशल कल्चरल सेंसिटिव टूल ही बनाने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने ये टूल्स बनाए हुए हैं, वैलिडेटेड है, उसकी मोबाइल ऐप भी है, पीड न्यूरो एम्स डायग्नोस्टिक्स, जल्दी से बोल रही थी क्योंकि नहीं बोल रही, क्योंकि पेरेंट्स के लिए नहीं है वो डॉक्टर्स के लिए है
1: अच्छा।
0: तो पीड न्यूरो एम्स डायग्नोस्टिक्स ऐप है जो गूगल और एप्पल प्ले स्टोर में, पर वो अभी डॉक्टर्स के लिए है टू डायग्नोस। हमने स्क्रीनिंग टूल भी बनाया है जिसमें से पेरेंट्स सस्पेक्ट कर सकते हैं इवन यू नो फ्रॉम 1 मंथ टू 2 ईयर्स, वो उसकी अभी ऐप बनाएंगे तो फिर वो पब्लिसाइज करेंगे ताकि पेरेंट्स उसमें कर सकें।
1: जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये सब जानकारियां होना, तभी हम उसका लाभ भी उठा पाएंगे। हमें एक ये मैसेज किया है रमन जी ने द्वारका से, लिख रहे हैं कि मेरा सवाल है कि ऑटिज्म बच्चों की इकोलेलिया कैसे फिनिश करता है, कैसे कम हो जाती है। योगेश आप बताना चाहेंगे इसके बारे में।
2: जी देखिए, ऑटिज्म इज मार्क्ड बाय इम्पेयरमेंट इन स्पीच एंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, तो इसमें हमारा एकोलेलिया भी आता है. एकोलेलिया में क्या होता है कि रेपिटेशंस ऑफ द वर्ड्स यूज्ड बाय द अदर्स. ऑटिस्टिक बच्चा दूसरा जो बोल रहा होता है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा. अगर एक ऑटिस्टिक बच्चे से पूछा जाता है क्या आप इस खिलौने से खेलना पसंद करेंगे, तो उसका आंसर होना चाहिए यस या नो में. पर वो यस या नो में आंसर ना देके वो बोलेगा टॉय टॉय टॉय. तो टॉय टॉय का जो रेपुटेशन इसने कहां से लिया, जो उसने सुना, और इसे ही हम एकोलेलिया कहते हैं. और एकोलेलिया ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट भी हो सकता है. कभी एकोलेलिया होता है कि बाहर बच्चा किसी की कोई चीज सुनकर आ गया है, जैसे रमेश बहुत गंदा लड़का है, तो वो घर में आके उसे दोहराता रहेगा रमेश बहुत गंदा लड़का है, रमेश बहुत गंदा लड़का है.
1: अच्छा.
2: तो इस टाइप के जो रिपीटेटिव जो वर्ड्स हैं बीइंग यूज्ड बाय द अदर्स, तो ये सारे एकोलेलिया में आते हैं.
1: जी जी. ये हमें एक मैसेज किया है परिधि ने, उन्होंने लिखा है मैं दिल्ली में रहती हूँ, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, आई एम लिसनिंग टू द प्रोग्राम एंड आई वांट टू थैंक यू शालिनी जी फॉर ब्रिंगिंग ग्रेट टॉपिक्स एंड ग्रेट डॉक्टर्स ऑन द शो विच आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस. थैंक यू सो मच फॉर बींग कनेक्टेड एंड फॉर लिसनिंग टू आर प्रोग्राम्स. इसी तरह से और भी हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा यह कार्यक्रम सक्सेसफुल है. ये हमें लिखकर भेजा है श्याम मित्तल जी ने रोहिणी दिल्ली से कि क्या वेदर सच Child should be kept at home or society or should he be kept separately in a different group? Please
0: absolutely discuss. Home with everybody. एक बहुत दुख का विषय है कि आपने देखा है कि लोगों की शादियां, बर्थडे पार्टीज और मूवी थिएटर्स में कितने आपको न्यूरोडाइवर्स लोग मिलेंगे.
1: जी.
0: तो वो इसलिए नहीं बाहर निकल पाते हैं, उनका भी दिल करता है बाहर घूमने का, दे आर हैप्पी उनका, लेकिन हैप्पीनेस शेयर करने का अलग तरीका है. हम क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे सोसाइटी में कोई बाहर आ जाता है व्हीलचेयर में, व्हीलचेयर ऑब्वियसली ऑटिज्म वालों में नहीं है पर किसी भी और कोई भी प्रॉब्लम है किसी को, तो वो सब अजीब वे से देखा जाता है बिकॉज वी हैव स्टिग्मा अटैच्ड, बिकॉज लोग इतनी बुरी नजर से देखते हैं, ह्यूमैनिज्म नहीं है. हमारे को ये समझना है कि हर इंसान, हर जीव आत्मा का इक्वल राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है, तो उसमें एक्सेप्ट करना जब तक सोच. और दूसरी बात है, हम लोग सारे जहां में बोलते रहते हैं एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी, पहले तो पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना है बच्चे को. ये नहीं है कि दो बच्चे है, एक में ऑटिज्म है एक में नहीं है, तो यू फीलिंग यू की ब्लेमिंग द चाइल्ड कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई. यू हैव टू एक्सेप्ट द चाइल्ड एट होम, देन यू नो इन द इमीडिएट फैमिली, फिर स्कूल की बात आती है, फिर सोसाइटी की बात आती है, दैट यू हैव टू रिमेम्बर. और एक और पॉइंट आता है कि क्योंकि इसके अंदर आप इवन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में कई बार सस्पेक्ट कर सकते हैं. छह महीने का बच्चा जो देख पा रहा है सुन पा रहा है लेकिन आपके नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपका बच्चा अगर 12 महीने तक टाटा बाय बाय नहीं कर रहा है, आपको बिल्कुल बस बड़बड़ाना भी नहीं शुरू किया, 16 महीने पे एक शब्द नहीं बोल रहा है मीनिंगफुल, 2 साल पे मीनिंगफुल शब्द नहीं बोल रहा है, और अगर कोई भी शब्दावली आके चली गई है तो. और कई बार ये जैसे बताया कि आप इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, क्या कई बार होता है ग्रैंड पेरेंट्स, मैं ब्लेम किसी को नहीं कर रहे, ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं कि माँ बाप भी रिजर्व थे, माँ बाप भी देर से बोले थे, तो वो ठीक हो जाएगा. आई मीन दैट ठीक हो जाएगा, यू मिस द बस बिकॉज क्या
1: एटीट्यूड की प्रॉब्लम.
0: हाँ हाँ, बिकॉज ये जो कई बार रिपीटेटिव जो बिहेवियर आ रहे हैं इनके, उसको स्टीरियोटिपीज कहते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट है, ये सब आगे डेवलप कर रहे हैं. अगर हम पहले पकड़ लें, और क्योंकि हमारे ब्रेन की प्लास्टिसिटी है, कई देखा गया अनुसंधान में कि बच्चे के जो ब्रेन की कनेक्टिविटीज में अबनॉर्मलिटीज और डिफरेंट होने लगता है, तो अगर हम एक्ट करना शुरू कर दें पहले तो फिर वो बनेंगे नहीं ना अबनॉर्मलिटीज. तो आउट यू आर इफेक्टिंग अर्ली इंटरवेंशन से आपका आउटकम बेटर होगा.
2: जी, जी आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं. जैसे एक मिरर न्यूरॉन्स है, इस पे बड़ी रिसर्च हुई है कि बच्चे जो ऑटिस्टिक बच्चे इमिटेशन नहीं कर पाते हैं, ना तो साउंड का कर पाते हैं ना किसी पेरेंट्स की एक्टिविटीज का कर पाते हैं. जैसे नॉर्मल बच्चे से अगर पेरेंट्स स्माइल करते हैं तो बच्चा जो है रेसिप्रिकेशन में स्माइल करके दिखाता है, पर ऑटिस्टिक बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है कि वो सही तरीके से इमिटेट कर पाए साउंड को या बिहेवियर को. तो ये आपने बिल्कुल सही बात कहा कि 5 साल में क्या होते हैं कि ब्रेन की जो प्लास्टिसिटी की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, जो मिरर न्यूरॉन जो एक्टिवेट नहीं है सही ढंग से. तो अगर हम उनको स्टिमुलेशंस देते हैं, अगर स्टिमुलेशंस के थ्रू हम प्रॉपर उनसे अगर बातचीत करते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलेशंस उनको बच्चों को देते हैं, तो उनकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है बढ़ सकती है, मिरर जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट हो सकते हैं।
1: तो बात वही है कि इसको कितनी जल्दी पहचाना जाए और उसके लिए पेरेंट्स के साथ रहना।
2: मैं कहना चाहूंगा कि जो 1.5 से 3 साल जैसे ऑनसेट होता है जो

0: डेढ़ से तीन साल में आइडली हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पाता। जैसे अभी मैडम बता रही थी कि एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है कि माता पिता को ये एक्सेप्ट करना, और अभी तो जैसा कहा कि इसके पिताजी भी बहुत लेट
1: ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा,
2: एक्सेप्टेंस बाद में आएगी। अभी ये है कि हम रेड फ्लैग नहीं दे रहे,
0: मतलब
2: एक्सेप्टेंस बाद में आएगी। पहले तो आ रहा है ना कि हम आ ही नहीं रहे हैं, फॉरवर्ड की प्रॉब्लम है, एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट की प्रॉब्लम है।
0: जी, जो जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, मतलब कि किस जो जैसे कि देखा गया कि 6 मंथ तक जो है स्माइल्स कर लेना चाहिए बच्चे को, और 12 मंथ तक उसमें जो बैबलिंग होना चाहिए जिसे हम बेबी टॉक कहते हैं वो सारा आ जाना चाहिए। एंड एक होता है रेस्पॉन्स टू नेम, 12 मंथ तक उसमें ये भी आ जाना चाहिए कि अगर बच्चे का हम नाम पुकारते हैं तो वो अपने नाम से जो है रेस्पॉन्ड करे।
2: पर ऐसा हो नहीं पाता है। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर वो लोग ये याद ना रखे कुछ भी, पर ये समझे कि आगे पीछे जो बाकी बच्चे हैं उसी के एज के हिसाब से उससे थोड़ा सा इनको पीछे लग रहा है या कुछ चिंता लग रहा है, तो बस ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर के पास जो भी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है, नहीं तो पीडियाट्रिशियन या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को दिखाएं ताकि वो देख ले कि सब ठीक ठाक है या कोई चिंता का विषय है।
1: लगभग ऐसा ही एक मैसेज है जिसका जवाब आप लोग अभी दे रहे हैं, तो मैं उनका पढ़ देती हूँ मैसेज। उन्होंने लिखा है, डज ऑटिज्म अफेक्ट चाइल्ड स्पीच व्हेन हिज पेरेंट्स कैन टॉक नॉर्मल, द चाइल्ड हैज अ स्टटरिंग वॉइस, ही कांट स्पीक फ्लुएंटली, ही इज 8 इयर्स ओल्ड।
2: तो नहीं, वो थोड़ा डिफरेंट।
1: अच्छा, ये डिफरेंट है, तो चलिए इसका बताइए।
2: इसमें ये है कि इसमें जो बच्चा नहीं बोल रहा है, ठीक है, वो बोल नहीं रहा है तो वो लैंग्वेज डिले हो रहा है।
1: अच्छा,
2: ये बात कर रहे हैं कि जो तुतला के बोल रहा है या उसकी क्लियर स्पीच नहीं है, वो आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है, वो दूसरी प्रॉब्लम है, वो स्पीच एंड लैंग्वेज में आती है, वो ऑटिज्म में नहीं है।
1: तो इनको भी दिखाना चाहिए,
2: इनको भी दिखाना डेफिनेटली चाहिए। हर चीज का एक्चुअली क्या है ना, हर चीज का उसका एक सोल्यूशन होता है, बट आपको एक प्रोफेशनल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है हो जाएगा, बिकॉज हम एक अंदर से है कि हाँ सब ठीक है, इट विल ओके।
1: जी जी, और जैसा आपने कहा घर के जो बुजुर्ग होते हैं कई बार वो भी कहते हैं नहीं ऐसा तो होता है, हमारे टाइम भी होता था पर सब ठीक ही हो गया, तो
2: रिजर्व्ड है, स्कूल में जाएगा तो घुल मिल जाएगा।
1: जी जी, दीस थिंग्स आर नॉट टू बी। आप क्या कहना चाहेंगे?
0: और ऐसे सिम्टम्स, कई सिम्टम्स है जैसे हैंड फ्लैपिंग्स है और रॉकिंग है और क्लाइंबिंग है, एक ही जगह पे जो है क्लाइंब करता रहना, जंपिंग करते रहना और क्लैपिंग्स लगातार बजाते रहना।
2: मैं एग्जांपल बताऊं, मेरे पास एक अभी, हम लोग जनरली पहले कुछ साल पहले, बिकॉज रनिंग एन ऑटिज्म क्लिनिक फॉर लास्ट 26-27 इयर्स, तो पहले तो हमारे 3.5-4 साल पे डायग्नोस हो रहे थे, अभी हमारे 1.5-2 साल में डायग्नोस हो रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली हमारे पास एक डॉक्टर मदर आई, वो उसके भी ये जो स्टीरियोटिपीज की बात हो रही है, वो बहुत ज्यादा हाथ हिलाए जा रहे थे विदाउट एनी रीजन। स्टीरियोटिपीज आर बेसिकली मूवमेंट्स विच आर नॉट एक्सप्लेन, कभी हाथ को हिला रहा है या जंप कर रहा है एक जगह, या वो पंजों पे चल रहा है, ये नहीं कि उसके पैर में प्रॉब्लम है, पंजों पे ही चल रहा है। तो वो उन्होंने आके दिखाया एंड एक्चुअली ऑटिस्टिक फीचर्स निकले। दैट मीन्स अगर हमें कुछ भी लग रहा है कि हटके है तो प्लीज कंसिडर,
1: दिखाना चाहिए। बिल्कुल, और ये कार्यक्रम हम आज इसीलिए कर रहे हैं जिससे हमारे श्रोता इसको समझ पाए कि ये रुकने की सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सीधे डॉक्टर के पास।
0: और इसमें मैडम एक टेक्निकल बात और आती है कि इसमें ये जो बिहेवियर हमने कहा सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर, ये सारा स्टीमिंग में आता है। अब हमें ये भी समझना होगा कि कभी कभी डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, कई टिक्स मूवमेंट्स भी होते हैं जैसे टर्निंग द हेड और नेल बाइटिंग या लिप बाइटिंग, तो इसमें ये देखना है कि ये जो मूवमेंट्स हैं ये बड़े इन्वॉलेंट्री होते हैं और ये टॉरेट सिंड्रोम से जुड़े होते हैं।
2: आई थिंक वो डॉक्टर को हम ये इनको छोड़ देते हैं, वो डॉक्टर को पता लगाना चाहिए, पीडियाट्रिशियन बताएगा।
0: मैं इसलिए श्रोताओं को भी ये बता देना चाहता हूँ कि अगर ये टिक्स मूवमेंट्स है तो ये स्टिमरिंग और टिक्स मूवमेंट्स में भी बड़ा डिफरेंस है।
1: हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर, इनसे पूछ लेते हैं इनकी समस्या। हेलो,
3: नमस्ते मैम।
1: जी जी नमस्कार, आप रेडियो डॉक्टर में? जी जी बताएं।
3: मेरा बच्चा है 4 साल का है, वो ना बोलता है ना चलता ना खाना पीना खाता कुछ भी ना है का।
1: अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से बोल रही है बता दीजिए।
3: अलीपुर से बोल रहा हूँ।
1: जी जी,
2: अभी उसका 4 साल का है ना, तो नॉर्मल पैदा हुआ था या कोई ऑपरेशन से हुआ था?
3: नॉर्मल हुआ था।
2: हाँ, तो एकदम से रोया था?
3: हाँ रोया था।
2: घर में पैदा हुआ था, अस्पताल में?
3: घर पे ही।
2: अच्छा, अभी उसने चलना शुरू किया, बैठना शुरू किया?
3: बैठबो ना करता है ना बोलता।
2: अच्छा, बैठना बोलता नहीं करता ना। फिर बेटा ऐसा है, आपको एक बच्चों के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, अगर क्योंकि जो ऑटिज्म के बच्चे हैं ना उसमें जनरली जो चलने वलने की प्रॉब्लम नहीं होती है, हाथ पैर सही चलाते हैं, उसमें जो हमने बताया था ना सामाजिक अभाव और कम्युनिकेशन जो संचार की प्रॉब्लम है, जो आपके बच्चे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इसको सेरेब्रल पॉल्सी हो, उसमें क्या होता है कि कोई भी प्रकार से आपके बच्चे के ब्रेन में डैमेज हुआ होता है। क्यों? अगर

0: बच्चा देर से रोया है जन्म पे, या कभी बिस्तर से भी गिर गया है, या कहीं छत से गिर गया है, या कभी दिमाग में इन्फेक्शन हुआ है?
1: तो नहीं है।
0: नहीं नहीं मैं वैसे कह रही हूँ, कारण बता रही हूँ कॉमन, पर कई बार कोई चीजें होती है हमें पता नहीं लगती है, और कई बार अगर ये सब नहीं होती तो कुछ अनुवांशिक कारण होते हैं, मैं ये कह रही हूँ। तो इसलिए अगर बच्चे के डॉक्टर को बताएंगे ना, तो हो सकता है कुछ अनुवांशिक कारण हो या कुछ ब्रेन में मैलफॉर्मेशन हो, तो बच्चा देख के ही पता चलेगा और कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे। पर आप दिखाइए जरूर अपने घर के आसपास एक बच्चों के डॉक्टर को, अगर आपको यहाँ दिखाना है तो वो हेल्पलाइन नंबर में आप अपना डिटेल देख के आपको अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं हम लोग देख के, ताकि गाइड करेंगे। क्योंकि उसकी देखो हमें क्या है, जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को पता करना है कि क्या है, और उसके लिए इसकी जिंदगी में जो उसका मैक्सिमम क्षमता है, पोटेंशियल है, उस तक लेके जाना है। तो जो भी प्रॉब्लम
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। और ये एक मैसेज हमारे पास आया है, इन्होंने लिखा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई स्किप कर जाए ऑटिज्म, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ऑब्जर्वेबल होते हैं, बहुत एविडेंट होते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा स्किप हो जाता है। एंड व्हाट वन शुड टेक केयर वंस डायग्नोस, इट इज डायग्नोस्ड इन अ टीनेज चाइल्ड।
0: ओके, एक्चुअल अभी जो प्रेविलेंस यूएस का लास्ट ईयर का डेटा का है ना, मार्च 2024 का 1 in 36 है, तो काफी कॉमन है। और WHO कहता है कि पूरे वर्ल्ड में 1 in 100 को उनको लगता है कि ऑटिज्म है, प्रेविलेंस के हिसाब से। दूसरा यह है कि आप कह रहे हो आपको लग रहा है कि लक्षण, ये लक्षण तब है जब कोई आपको एक्सपर्ट देख रहा है और उसने ये सारी चीजें देखी। हर बच्चे में हर चीज नहीं होती और हर बच्चे में हर चीज की सिवेरिटी नहीं होती। और ऑटिज्म सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑटिज्म की जो है, जो यूएस वगैरह का, विदेशों का जो डेटा है, उसमें कहते हैं कि 40% बच्चों में मानसिक समझ कम होती है, परंतु हमारे हिंदुस्तान में बच्चों में, जो हमने बच्चे का अभी हमने 1874 बच्चों का एनालाइज किया डेटा हमारे, उसमें हमने देखा कि 80% में कोमॉर्बिडिटीज थी, मतलब या तो चंचलता या दौरे पड़ने या इत्यादि बहुत सारी, दैट मीन्स पूरा बच्चे को देखना पड़ेगा। और हमारे 70% बच्चों के दिमाग में समझ थोड़ी कम थी। तो इसलिए क्या होता है, जिनकी समझ ठीक होती है तो उनमें चंचलता होती है, तो वो ADHD करके निकालते हैं, वो चले जाते हैं, मिस हो जाते हैं, वो देखते नहीं है, तो दे गेट मिस्ड। सो दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दूसरा, अगर एक बच्चे को किशोर अवस्था में है प्रॉब्लम्स जो आती हैं, जैसे नॉर्मली एडोलेसेंट में, किशोर अवस्था में, क्योंकि बॉडी ग्रो कर रही होती है, तो उसके अंदर बहुत सारे, और किसी भी किशोर अवस्था में कोई भी बच्चा न्यूरोडाइवर्स है, तो कोई भी बच्चे बाकी आम बच्चों में भी कितनी बिहेवियर प्रॉब्लम है, कोई गुस्सा हो जाता है, माँ बाप की सुनता नहीं है, बहुत सारी बातें होती हैं। इन बच्चों में ऑटिज्म में स्पेसिफिकली, क्योंकि उनकी बॉडी में डेवलपमेंट हो रही है, फिजिकली वो हॉर्मोन्स आ रहे हैं, मेल हॉर्मोन्स आ रहे हैं, बॉय बोल रहे हैं, तो इनके अंदर कई बार क्या प्रॉब्लम आती है कि सेल्फ ह्यूमिलेटरी बिहेवियर जो होता है वो जनरली हर एक इंसान में होता है, पर वो हमेशा प्राइवेट होता है और कोई बात नहीं होती, हिंदुस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं होती है, तो वो मिस हो जाता है, पता नहीं चलता। पर इनके अंदर ये इनहिबिशन नहीं रहता कि क्या पब्लिक है क्या प्राइवेट है, तो इनको वो सेल्फ स्टिमुलेटरी पब्लिक के लिए भी हो सकता है, दैट इज हाउ दे हैव टू बी टोल्ड कि वो उसको के अगर पेरेंट्स को दिखाना होता है कि जो हमारे डेवलपमेंट के जो हमने खुद बनाए हुए प्रिंट आउट्स की कैसे बॉडी ग्रो हो रही है और कैसे वो फोटो से बताना है, और फोटो से वो बच्चे को समझाते हैं पेरेंट्स में से फादर या मदर जो भी क्लोज है कि बताओ जी आपकी बॉडी बढ़ रही है, हेयर आ रहे हैं इधर, ये सब, तो दैट इज नॉर्मल, सो दे बिकम कंफर्टेबल। तो फोटो से उनको समझाना है, और अगर इनका सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर होता है देन दे हैव टू से कि भैया माँ बाप के सामने तो कर लो, बहन के सामने नहीं करना और किसी के सामने, लेकिन ये है कि अगर वो कोई कर रहे हैं तो आपको उनको डाइवर्ट करना पड़ेगा दूसरे चीज में, उसी समय नो नो नहीं करना है, फिर उनका रिटेलिएशन होता है।
2: ये सारी चीजें उनको समझना बहुत जरूरी है,
0: और इनकी साइकोसोशल चीजें पूरी समझनी पड़ेंगी, क्योंकि इनके अंदर जो बाकियों में इतनी सारी बिहेवियर इशू आते हैं तो इसमें और आता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन देयर इनर फीलिंग्स एज वेल।
2: जी जी, हमारे एक और लिसनर लाइन पर हैं। हेलो
3: जी, नमस्कार।
2: जी नमस्कार,
3: मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी बताएं प्रश्न।
3: मेरा पूछना है कि जो सेरेब्रल पॉलीसी के मरीज हैं, क्या एज रिलेटेड फैक्टर भी होते हैं, यानी उनकी उम्र लंबी नहीं होती, क्या ये मिथक है?
0: ऑलरेडी चर्चा का विषय नहीं, पर आपको बता देते हैं, वो कोई भी डैमेज हो रहा है, क्योंकि कई सेरेब्रल पॉलीसी बच्चों में, कुछ बच्चों में ऑटिज्म भी हो सकता है, तो उसमें क्या है कि कोई भी बच्चा जो डेवलपिंग ब्रेन है, चाहे वो प्रेग्नेंट मदर है, उसके पेट में के टाइम है, डिलीवरी के आसपास के टाइम है, या फर्स्ट टू इयर्स ऑफ लाइफ में, या तो देर से रोया है बच्चा, या कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, या कोई चोट लगी है, जैसे मेनिनजाइटिस होता है, मेनिंगो इंसेफेलाइटिस होता है, कोई स्ट्रोक हो जाता है, कोई भी चीज ब्रेन में डैमेज हुई है इन द फर्स्ट टू इयर्स ऑफ लाइफ, डैमेज एक टाइम का ब्रेन को, लेकिन वो डेवलपिंग ब्रेन है तो उसके रेपरकशंस आगे होते हैं, तो उनके हाथ पैर में कोऑर्डिनेशन नहीं होती, ढीले हो जाते हैं, या मोस्टली लोगों में बाद में टाइट हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें अलग हैं जो सेरेब्रल पॉलिसी में
2: वो हम कभी फिर से आपके साथ बात करेंगे। आज तो हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म पर, और समय कम हो रहा है क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे एक्सपर्ट्स के पास है। ये मैसेज हमें किया है प्रीति ने चंडीगढ़ से, और लिख रही है, आई एम अ स्कूल काउंसलर, यू हैव टॉक्ड अबाउट सम स्क्रीनिंग टूल्स अवेलेबल ऑन द एम्स वेबसाइट, कैन यू टेल अबाउट दैट एंड कैन स्कूल काउंसलर्स यूज द सेम फॉर स्क्रीनिंग चिल्ड्रन, एक तो ये जानना चाहती है। दूसरा इनका एक प्रश्न और है कि आजकल बहुत इनफर्टिलिटी है और पीपल आर गेटिंग IVF डन, तो क्या ये भी रीजन हो सकता है इंक्रीज इन स्पेशल नीड चिल्ड्रन?
0: फर्स्ट थिंग जो हमने मैंने बोला स्क्रीनिंग वाले बनाए, मैंने साथ में ही बोला था उसकी ऐप अभी बनाई नहीं, ऐप बना रहे हैं। आपको अगर चाहिए वो स्टूल वो हम आपको दे देंगे, आप मुझे मेल कर दीजिए, मेरा नाम है जो है shefaligulati@gmail.com है, SSS लगाइएगा तो वो मैं आपको मेल कर देंगे, पर हम ऐप बना रहे हैं, वो हर एक को बनाने के लिए मनी भी अरेंज करना पड़ता है। सेकेंड थिंग वॉज आपने जो IVF दिट हैज बीन शोन वर्ल्ड वाइड दैट देर इज द प्रेवलेंस ऑफ मैलफॉर्मेशन एंड प्रॉब्लम ऑफ न्यूरो डेवलपमेंट इन IVF में ज्यादा है, और ये है स्पेशली इक्सी में और ज्यादा है। अगर IVF कराते हैं वो एटमोस्फियर इज नॉट सेम एज द वूम, सो इट हैज बीन शोन कि अगर आप प्रेगनेंसी नॉर्मल है बलिस्मत IVF है तो मैलफॉर्मेशन होना, बनावट दिमाग में बनावट में नुक्स, और जो न्यूरो डेवलपमेंट प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती है, और स्पेशली जब वो स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं ओवम में जो इक्सी करते हैं उसमें और भी ज्यादा
2: तो रीजन हो सकता है
0: डेफिनेटली।
2: यशपाल जी हमसे पूछ रहे हैं द्वारका दिल्ली से कि नमस्कार आप सब डॉक्टर्स को, और थैंक्स फॉर अनकॉमन बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, माय क्वेश्चन इज कैन प्रिजर्विंग कॉर्ड ब्लड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज्म एंड वेदर इट इज रियली यूजफुल टू प्रिजर्व स्टेम सेल्स ड्यूरिंग बर्थ।
0: CAK बहुत बड़ा एक पैंडोरस बॉक्स आपने खोल दिया। एक तो पर स्टेम सेल आइस ऑफ टुडे ऑटिज्म में उसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है एंड इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर क्लिनिकल यूज। हम भी अनुसंधान कर रहे हैं और इस वक्त भी हमारी एक रिसर्च चल रही है कि स्टेम सेल का भी एक पार्ट एक्सोसोम्स हटा के हम ऑटिज्म के माइस मॉडल में स्टडी कर रहे हैं। तो अब दूसरा कि स्टेम सेल को अगर हम प्रिजर्व कर दें, टेक्निकली स्पीकिंग यू नो यू कैन डू दैट, पर वो जब है कि कोई अगर और प्रॉब्लम हो जो जेनेटिक ना हो, क्योंकि अगर कोई ऑटिज्म में तो आपको बताया कुछ जेनेटिक अनुवांशिक है, कुछ एनवायरमेंटल है, कुछ एपिजेनेटिक है, तो उसमें तो बिल्कुल अभी नहीं है,
2: नहीं है।
0: पर आप कह रहे हो कि वैसे प्रिजर्व करें कि नहीं, वो भी एक बड़ा डिबेट है।
2: Yes.
0: पर पॉइंट इज कि अगर आप कर रहे हो तो कोई जेनेटिक बीमारी बच्चे में हुई तो उसमें तो काम नहीं आएगा, क्योंकि वो स्टेम सेल में भी तो वो सेम ही बीमारी है। अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो पोटेंशियली फ्यूचर में आ सकता है, पर इट इज नॉट वेरी क्लियर फॉर मी टू रिकमेंड और नॉट।
2: गॉट इट। एक बात आपने डॉक्टर शिफाली बीच में बोली थी कि इसमें सिवियरिटी भी होती है।
0: Yes.
2: तो हम चाहेंगे कि हम थोड़ा इस पे भी डिस्कस कर लें, सिवियरिटी क्या है इसमें अगर हम ऑटिज्म की बात करते हैं। योगेश आप बताएं।
1: हाँ देखिए, डिग्री ऑफ सिवियरिटी के आधार पे इसे तीन भागों में बांटा गया है। हम कह सकते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में क्या हो रहा है कि आप में कोई वर्बल स्किल्स इस बच्चे में नहीं होता, माइल्ड में जो है बहुत कम जो है वर्बल स्किल्स जो है होता है, और अगर हम सीवियर्स की बात करें तो यहाँ बिल्कुल वर्बल स्किल्स नहीं है। इस तरीके से हम एपिलेप्सी की बात करें तो जो सीवियर्स में जो है एपिलेप्सी के सिम्टम ज़्यादा कॉमन रहते हैं, और जो मॉडरेट में थोड़े कम है और माइल्ड में बिल्कुल नहीं होते हैं, तो इस हिसाब से देखी गई है। और एक होता है सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, जो सीवियर्स ऑटिज्म होता है उसमें सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स बहुत होता है, जिसमें हेड बैंगिंग है और आपका रिस्ट बाइटिंग है, ये सारी चीजें बहुत होती हैं, और मॉडरेट में थोड़ा कम होता है और माइल्ड में बिल्कुल नहीं होता है। तो इस तरीके से हम अगर सिम्टम्स के हिसाब से देखे जाए और डिग्री ऑफ सिवियरिटी के हिसाब से देखे जाए तो सब आपने देखा कि माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया और सीवियर हो गया।
2: जी जी बिल्कुल। और एक ये प्रश्न और आया है हमारे पास, पंकज शर्मा जी हमें लिख रहे हैं, जगह इन्होंने नहीं लिखी है, इन्होंने लिखा है कि मेरा लड़का बहुत एग्रेसिव है, उसको अगर डांटते हैं तो वापस मारता है और प्रॉपर बोल भी नहीं पाता, शब्द नहीं बोलता, प्लीज बताएं क्या करें क्योंकि वो 6 साल का है।
0: इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दिखाएंगे, एक आपको पूरी टीम देखनी पड़ेगी, एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट विद साइकोलॉजिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वगैरह. एक इम्पोर्टेंस हमें देखना है कि हम ये देख रहे हैं कि वो एग्रेसिव है, इसलिए नहीं है कि आके उठा के हम दवाइयां शुरू कर देंगे. हमें देखना है, एनालाइज करके डिटेल में देखे कि क्या ट्रिगर था, क्या ट्रिगर था जिसकी वजह से वो हुआ है. तो वो देखते नहीं है पेरेंट्स, तो हमें ट्रिगर को हटाना है, ना कि उसके वो बिहेवियर को. दैट इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन दिस सिचुएशन. और हमें ये भी समझना है कि हर वो दिखाएंगे तो उनका जब बच्चे का टेस्ट होता है उसका क्या डेवलपमेंट की क्षमता है, आईक्यू कितना है, उसके हिसाब से ही हमें एक्सपेक्टेशन रखनी है. जैसे हम लोग माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट होते हैं और सिवियर होते हैं, साथ में हाई फंक्शनिंग होते हैं जिनका भी आईक्यू 70 से ऊपर होता है, उनको हम हाई फंक्शनिंग बोलते हैं. और कुछ एक सेवेंट होते हैं जिसमें एक्सेप्शनल क्वालिटीज होती हैं. आपको अगर अपना आप मुझे डेट ऑफ बर्थ बता दो तो वो बच्चा एक सेकंड में आपको डे ऑफ बर्थ बता देगा.
2: अच्छा,
0: टू डिजिट इंटू टू डिजिट नंबर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम अपना मोबाइल फोन खोल देते हैं, वो सिक्स डिजिट इंटू सिक्स डिजिट मल्टीप्लाई एक सेकंड में कर देंगे, स्क्वायर रूट कितनी बार कर देंगे, तो मतलब एक्सेप्शनल क्वालिटीज होती है. एंड ऑल्सो टू रिमेम्बर दैट पीपल लाइक आइंस्टाइन, मैरी क्यूरी, न्यूटन और ये यू नो ऑल ऑफ देम एंड मोजार्ट, इन सबको ऑटिज्म था, तो फिर भी वो कर सके. तो हटके जो भी है लेकिन वो कितना कुछ डेवलप कर चुके हैं, तो सबको हमें एक्सेप्ट करना है. और आई नो टाइम इज रनिंग, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. आई फील वेरी सैड फॉर वन पेशेंट फ्रॉम हरियाणा का एक विलेज में. उसके यहाँ स्कूल में इतनी बुलिंग होती है, उस बच्चे के कपड़े उतार के उसको गंदे नाली में घिसार देते हैं, ऑटिज्म के बच्चे को. तो मेरे को इतना दुख आया कि आप सोचो कि आपके बच्चे के साथ ऐसा करेगा तो क्या है. तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी लिसनिंग शुड अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू अंडरस्टैंड, टू स्कूल टीचर्स हैव टू अंडरस्टैंड. उन बच्चों को फिर बाद में ही सिखाएंगे ना स्कूल वाले को. सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल.
2: बिल्कुल, वी कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स. एंड बिल्कुल यहां पर मैं समझ पा रही हूं डॉक्टर शेफाली की जो मनस्थिति है और वो जिस तरह से बात कर रही हैं. एक डॉक्टर इस तरह से एक इमोशंस के साथ जुड़कर अपने श्रोताओं से बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी डेडिकेटेड वो हैं अपने काम के प्रति. ऑटिज्म पर वो एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर शेफाली गुलाटी, और उन्होंने यहां अपना मेल आईडी भी पर्सनल बता दिया है कि आप उनसे सीधे जुड़ सकते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर डेडिकेशन, फॉर योर वर्क ऑन ऑटिज्म. और भी बात करना चाह रही हूं मैं, लेकिन समय हमें इजाजत बहुत कम देगा. मैं ये जरूर चाहूंगी कि चलते चलते एक क्लोजिंग स्टेटमेंट्स आप दोनों के ले लूं. मैं बस यहां पर एक बार रिपीट करना चाहती हूं, वेबसाइट बताना चाहती हूं, www.pedneuroaims.org जो मैडम ने बताई. साथ ही साथ एक नंबर मैडम ने बताया 1-800-111-7776. तो ये वो नंबर्स हैं, ये वो वेबसाइट है जहां पर आपको और अधिक इन्फॉर्मेशन इस संबंध में मिल सकती है. तो चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, हमारे पास समय कम है, बस उतना ही बताएं.
0: okay, 10 seconds. माई पॉजिटिव ऑटिस्टिक आइडेंटिटी, दैट इज जिसको भी ऑटिज्म है उसमें जो उसकी पॉजिटिविटीज है हमें उसको देख के निखारना है. एंड वी आर ऑल न्यूरोडाइवर्स, और हम जो बात करते हैं कि सब है, मतलब न्यूरोडाइवर्स है, सबका इक्वल राइट है, तो हमें साथ में इक्विटी की बात करनी है. जिसके अंदर जो चीज की कमी है सपोर्ट थोड़ा देना है. एक दीवार है, अगर छोटे हाइट का बच्चा है तो उसको स्टूल थोड़ा लंबा देना पड़ेगा, बलिस्मत जो लंबे हाइट का, तो इक्विटी की बात है. लेकिन ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट टू लाइफ.
2: बहुत अच्छी बात.
1: मैं तो कहूंगा कि ऑटिज्म के लिए जो गोल्डन रूल्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं. पहला तो होप है, आप हमेशा आशा रखिए कि आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगा, और आप कॉन्स्टेंट और परसिस्टेंटली एफर्ट्स करते रहिए, आपको रिजल्ट मिलेगा. और मैं ये नहीं कहता ये मेंटल कंडीशंस है, कोई इसका मैं कहूँ कि कोई पूरा क्योर मिल जाएगा, पर हाँ वो इतना अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएगा कि ताकि आगे चल के वो थोड़ा इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बन पाए. होप है और एक्सेप्टेंस है, पूरा एक्सेप्ट करिए उनको पूरी तरीके से. और तीसरी चीज है एंगेज, उनको 24 घंटे उनको प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव चीजों में एंगेज रखिए, उनके साथ एम्पैथी रखिए और एक प्यार से उनसे अटैचमेंट रखिए. आप देखना प्यार में बहुत शक्ति होती है, अगर प्यार से उनके साथ एंगेज रहेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छा प्रोडक्टिव रिजल्ट निकल के आएगा. और एक मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि जो बहुत जबरदस्ती बच्चों को काउंसलिंग सेंटर में, रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाते हैं, और ये बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है कभी कभी। तो इस बात को ध्यान रखना है कि घर में बड़ा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट उनको देना है ताकि वो अच्छे ढंग से ग्रो कर पाए और आपके साथ जुड़ पाए।
2: बहुत बहुत पॉजिटिव बातें आज यहाँ दोनों डॉक्टर्स ने बोली हैं, और बिल्कुल ये कार्यक्रम जो आप सुन रहे हैं तो मुझे लगता है जरूर आप इससे फायदा लेंगे, बहुत सारे श्रोता इससे फायदा लेंगे, उन बच्चों को भी फायदा मिलेगा जिनको उस प्यार, उस केयर, उस हमदर्दी तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मैडम मुझे टोकेंगी, उनको प्यार की जरूरत है, उनको सपोर्ट की जरूरत है, उनको एक आम नागरिक को जैसे सारी चीजें चाहिए वो देने की जरूरत है। तो आप ये प्यार हमको भी देते रहिए, हमारे इस चैनल को देते रहिए, FM रेनबो को सुनते रहिए, और खास तौर पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुनते रहिए। तो मैं धन्यवाद दूंगी हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर शेफाली गुलाटी, ऑटिज्म एक्सपर्ट एंड चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पीडिया।

0: पेडियाट्रिक्स एम्स न्यू दिल्ली, योगेश कुमार सीनियर साइकोलॉजिस्ट, आप दोनों यहाँ आए, ऑटिज्म के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वीकार करिए मेरा भी नमस्कार। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नंदन वंदन अभिनंदन, मैं गीतिका उनियाल संदेश टू सोल्जर्स के आज के संग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। यह हमारे लिए हमेशा ही हर्ष की बात है कि हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमारे मेहमान हमें कुछ ऐसा दे जाते हैं जो न केवल एक याद होता है लेकिन हमारे लिए एक पग होता है आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश के प्रति अपनी सद्भावना को दिखाने के लिए। और हम हमेशा यही कहते हैं कि संदेश टू सोल्जर्स के अपने इन एपिसोड्स के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचते हैं, हर उस घर तक जहां से एक वीर निकलता है, जहां से एक सिपाही निकलता है, जहां से माँ ये कहती है कि जा बेटा निकल, तुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, तेरी माँ वहीं तेरे लिए खड़ी है तेरी आस में, लेकिन तुझे सर्वप्रथम भारत माता के लिए, चाहे फिर तेरे अपने प्राणों का निछावर क्यों ना करना हो, तुझे हमेशा हमेशा देश की गौरव के लिए, समृद्धि के लिए काम करना है, कर्तव्यों का निर्वाह करना है। और आज इसी कड़ी में हम आप सभी से साझा करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आमंत्रित हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, थल सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल वरुण सिंह तरवर, जिन्हें 2023 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। तो आइए सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर जी का। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: थैंक यू सो मच गीतिका, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स लिसनर्स हु हैव कम इन।
0: जी, जैसा कि मैंने कहा कि हम घर घर तक पहुंच रहे हैं, हर घर से एक वीर निकलता है, एक सिपाही निकलता है, अधिकारी बनता है, देश के लिए समर्पण की भावना लिए वो यही सोचता है कुछ भी हो जाए लेकिन देश की आन बान और शान के लिए हमेशा हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहूंगा। लेकिन वो फैसला लेना कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ये भावना अपने मन में उत्पन्न करना कि देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है, आपके मन में ये भावना कैसे उत्पन्न हुई कि मुझे भी देश के लिए काम करना है? क्योंकि जिस वक्त ये फैसला लिया होगा निश्चित रूप से बहुत छोटी उम्र के रहे होंगे आप।
1: बिल्कुल गीतिका जी, मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। मेरे नाना जी मेजर नाथन सिंह, वो फर्स्ट राजपूत जो कि अभी फोर गार्ड्स है उसमें थे, सेकंड थर्ड जीआर में भी थे। मेरे फादर खुद कर्नल गजराज सिंह आर्मी सर्विस कोर में थे। और मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ, हमारा मेरा गांव है जाटू लोहारी भिवानी में
0: जी।
1: वहाँ से भी एक एक एक वो है, ट्रेडिशन है कि सारे बच्चे फौज में जाएं। और इन्हीं को देखते हुए मेरा हमेशा मन रहा है कि मैं फौज में जाऊँगा। और मैंने सिर्फ एक ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया था, वो भी राष्ट्र रक्षा अकेडमी का, अपने फादर की यूनिफॉर्म, अपने ग्रैंडफादर की यूनिफॉर्म को देख के उसी से मैं मोटिवेट हुआ और मैंने अपना जीवन सेना को समर्पित कर दिया।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जब पिताजी को आपने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, और जब उस वक्त फॉर्म भरा होगा, जब सिर्फ एप्लीकेशन दायर की गई होगी, तो उस वक्त घर में माहौल कैसा था?
1: देखिए, हालांकि हम फौजी परिवार से हैं लेकिन कोई माँ, किसी माँ को ऐसा नहीं लगता कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चले जाए, तो ये बातचीत तो हुई थी। लेकिन अपने मन पे शायद पत्थर रख के मेरी माँ ने खुशी खुशी मेरे को एनडीए भेजा, मेरे को याद है।

0: मेरे सिलेक्शन के बाद हम तीन लड़के थे जो कि साथ में एनडीए की तरफ गए, और रेलवे स्टेशन पे सभी की माएं हमको बाय बाय करने आई। शायद दो माएं रो रही थी, लेकिन मेरी माँ हंसते हंसते उनको उन्होंने मेरे को अलविदा किया एनडीए की तरफ।
1: वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। एक माँ की पुकार एक माँ ही सुन सकती है। जब भारत माता की बात होती है तो उसकी आवाज ना सिर्फ एक माँ के दिल तक ही पहुंच सकती है, इसीलिए वो अपने बच्चे को तैयार करती है, बोलती है जाओ अब पीछे मुड़कर मत देखना। अच्छा ये बताइए कि जब आप स्कूल में थे और आपने उस वक्त निर्णय लिया कि अब आर्म फोर्सेस जाना है, साथ में बहुत सारे दोस्त होंगे, क्या उनमें भी यही भावना थी? और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो किस तरह से आपको उन्होंने कहते हैं ना अपना प्यार कैसे बसाया?
0: मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकुआं, टैप्स बोलते हैं उसको, धौलकुआं का पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ पे अधिकतर सेना के आर्मी नेवी एयरफोर्स के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो काफी जोश था उस टाइम पे, 92-93 की बात कह रहा हूं मैं, बच्चों को एनडीए ज्वाइन करने का। और हम तीन चार लड़के सिलेक्ट हुए थे एनडीए में, मैं उनमें से एक था, तो पूरे स्कूल में नाम हुआ। इसके अलावा मैं थोड़ा गोलू मोलू था अपने 12th क्लास में, और जब उन्होंने मेरे को देखा एनडीए जाते हुए, उस टाइम पर मेरे को वजन घटाना पड़ा, तो काफी अचंभित हो गए मेरा मोटिवेशन देखे कि कैसे मैंने इतना वजन घटाया। और जब मैं उसके बाद अपने दोस्तों से मिलता हूं तो वो देखते हैं कि कैसे ये एक मामूली सा बच्चा एक ऑफिसर बन गया।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। जब आप ऑफिसर बने तब अलग तरीके से आपको लिया गया होगा, कि उनका हीरो उनके बीच में था, तो उस वक्त वो उन्होंने आपको बहुत प्रेज किया होगा, पूछा होगा कि क्या हम भी जा सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस, ऐसा कुछ हुआ?
0: देखो जाना तो काफी लोग जाते थे, ये मेरे को हर बच्चा जो कि एपीएस से होता है तकरीबन कोशिश तो करता है बट हो नहीं पाता, तो काफी प्रेज होती है उन बच्चों की स्कूल में, अपने क्लास में। हमारे स्कूल का जो न्यूज़लेटर निकलता है उसमें हमारा नाम आता है, तो और जो मेरे क्लासमेट्स थे जो एनडीए नहीं जा पाए, वो हमेशा मेरे को एक अलग ही नज़र से देखते हैं, एक अलग ही इज्जत से देखते हैं। वो इज्जत तभी मिलती है जब आप मेहनत करके देश के लिए एनडीए या जो भी एंट्री आप चाहते हो फौज ज्वाइन करो।
1: क्या बात है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप अपने दोस्तों के बीच काफी लोकप्रिय थे और इसी वजह से आपको बहुत प्यार भी मिला, दुलार भी मिला। ये बताइए स्कूल में काफी शैतानियां क्या करते थे?
0: हाँ यस, मेरा एक बड़ा भाई है तो मैं छोटा, घर में भी छोटा हूँ, और स्कूल में भी मेरे अच्छे दोस्त थे, मैं काफी शरारी था। मेरे 12th ए की बात कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे 12th ए वाला सुन रहा है तो, काफी शरारती था मैं, लड़कों लड़कियों को दोनों को तंग करता था छोटी मोटी बातों के लिए, कभी कभी उनका टिफिन खा जाता था, गोलू मोलू तो था ही मैं, पर मैं काफी लोकप्रिय था। मेरे अच्छे दोस्त हैं और कुछ हैं जो अभी भी मेरे ख्याल में 30-35 साल बाद मेरे टच में हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, हम उनसे बात करते रहते हैं। जो रिश्ते स्कूल में बने वो अभी तक बरकरार है।
1: अच्छा ये बताइए शैतानियों का ये दौर क्या एनडीए तक जारी रहा, या वहां पर आप एनडीए खड़कवासला वहां एंटर करते साथ ही डिसिप्लिन बॉय बन गए? आर्मी का तो काम ही है आर्म फोर्सेस का कि आपसे आपने इसे एक ऑफिसर बनाना है, लेकिन एक यंग बच्चा जब आर्म फोर्सेस ज्वाइन करता है या पहले एनडीए एंटर करता है तो उस वक्त उसके सोचने का तरीका सब कुछ अलग होता है, आचार व्यवहार, तो शैतानियों का वो दौर वहां चला या फिर वहीं जाकर एंटर करते साथ ही सुधर गए?
0: शैतानियों का दौर तो एनडीए में भी चला। शुरू में जब एनडीए पहुंचे तो एनडीए की जो फिजिकल एक्टिविटी होती बहुत कठिन होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है। हालांकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था लेकिन मैं तैयार नहीं था कि एनडीए में कितना आपको रगड़ा लगता है, कितना डिसिप्लिन, तो उसके चलते थोड़ा शरारत करने का मन तो करता है। और मेरे को लगता है इसीलिए ये जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ऑफिसर हों चाहे ड्रिल उस्ताद हों, वो खड़े रहते हैं हमको ये शरारत करने में रोकने के लिए। एनडीए में मन चंचल होता है, आप सिलेक्ट हो गए होते हो, एनडीए में पहुंच जाते हो, आपको लगता है आप यहाँ के आप ही राजा हो, लेकिन फौज के लिए एक अलग किस्म का डिसिप्लिन चाहिए। टाइम पे उठना, टाइम पे काम करना, टाइम पे हर चीज करना, वो डिसिप्लिन ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, हमारे कोस्टमेट्स होते हैं, कुछ हमारे स्क्वाडन सीनियर्स होते हैं, वो हम मिलाते हैं।
1: वाह क्या बात है, तभी कहते हैं कि हम आपसे अधिकारी बनाएंगे, आप में से ही उस अधिकारी को निकालेंगे, उस ऑफिसर को बनाएंगे जो कल चलकर देश के लिए अपनी सेवाओं को देगा। तो निश्चित रूप से एनडीए ने आपका फॉर्मेशन किया, आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया। एनडीए के उपरांत, एनडीए के बाद फिर आगे कहाँ किस ओर रुख किया आपने, कब कमीशन हुए और एनडीए की सीधे बाद पोस्टिंग मिली या फिर आगे ट्रेनिंग का दौर चला?
0: एनडीए के 3 साल के बाद 1 साल के लिए मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी गया, देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जो कि बहुत ही पुरानी 1930s की अकेडमी है। वहां से मैंने कमीशन पाया रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में, मेरी रेजिमेंट है 93 फील्ड रेजिमेंट, जिसको मैंने कमांड भी किया। और कमीशन होते ही मेरी रेजिमेंट उस समय कश्मीर में तैनात थी। और इमेजिन मेरी किस्मत कितनी अच्छी, मैं पैदा भी कश्मीर का हुआ हूँ और मेरी पहली पोस्टिंग भी कश्मीर में थी, तो मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही कश्मीर बन गए। मेरी रेजिमेंट ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे, 93 फील्ड रेजिमेंट को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला, क्योंकि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में हमने बहुत अच्छा काम किया। और उसी में मैं अपनी रेजिमेंट के रंग में रंग गया और आगे मेरा सफर 93 फील्ड रेजिमेंट और तोपखाना आर्टिलरी जिसको कहते हैं उसमें शुरू हुआ।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो जब एक पूर्ण रूप से अधिकारी बनके पीछे मुड़कर देखा तो क्या कभी सोचा था कि जो आज सब कुछ महसूस कर रहा हूँ शायद वो महसूस ना कर पाता अगर यहाँ ना होता?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मेरा निर्णय, मेरा बैकग्राउंड जिसकी वजह से मैं एनडीए गया, एनडीए में मेरा स्क्वाड्रन हंटर स्क्वाड्रन, मेरे कोर्समेट्स हंटर स्क्वाड्रन के या अलग और कोर्समेट्स हैं, आईएमए में मेरा जोजिला कंपनी, मेरा जोजिला कंपनी के जो मित्र हैं, और मेरी रेजिमेंट 93 फील्ड रेजिमेंट, इनका बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है जो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरा वेल्थ ऑफ नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है, वो सब इनकी वजह से है। अगर मैं ये शायद नहीं करता तो शायद मेरी जिंदगी इतनी फुलफिलिंग नहीं हुई होती।
1: वाह क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, और माँ से दूर हुए कुछ दिन तो बड़ा खराब लगता होगा, रोना भी आता होगा, माँ से बात भी नहीं हो पाती होगी, तो ऐसे में क्या करते थे?
0: आपने आप दुखती रख पे मेरे हाथ रख दिया।
1: मैं आज बच्चे के लिए माँ बहुत महत्वपूर्ण है।
0: 2-3 दिन पहले ही मैं इसके बारे में सोच रहा था कि कैसे एनडीए में रात को, अच्छा तो मैंने एक फोटो एल्बम लेके गया था मैं,
1: अच्छा,
0: जिसमें मेरे भाई के, मेरी मदर के, फादर के पुराने फोटोज थे उस टाइम पे, तो मतलब नए फोटो थे। तो रात को जब मेरे को याद आती तो मैं फोटो देखता था, एंड शायद 1-2 बार शायद रोने को भी हो गया हूं, रोया नहीं हूं, बट देख के ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी माँ किसी तरह मेरे को उठा के वापस ले आओ,
1: ले जा ले, ग्रिल लगा ले।
0: 5 महीने का टर्म होता है जून टू नवंबर, बस फिर वो वेट करते करते कि कैसे दिसंबर होगा और कैसे मैं घर जाऊंगा, उसी में समय निकल जाता है।
1: वाह क्या बात है। तो माँ का जो प्यार है वो तो हमेशा
0: हमेशा,
1: हमेशा आपके साथ रहता है, कहीं ना कहीं वो जितनी बार आप गिरते हैं ना आपको उठने भी मदद करता है,
0: मदद करती है।
1: आप
0: मेरी माता जी बहुत ही स्ट्रांग, अभी 75 की है, शी इज वेरी स्ट्रांग, और मेरे को लगता है मेरे में जो भी मनोबल आत्मविश्वास आया है, अ लॉट हैज गॉट टू डू विद माय मदर, क्योंकि वो हमेशा मैंने उनको हंसते हुए कोई भी प्रॉब्लम से आराम से उभरते हुए देखा है, उनको कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा। एक बार जब उनकी मदर पास अवे हुई थी उसी टाइम पे मैंने उनको रोते हुए देखा, वरना मैं उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। ऐसी बहुत कम माएं होंगी जिन्होंने, तो शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन।
1: जी कहीं ना कहीं अगर आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और कहा जाता है कि बच्चे का भाग्य उसकी माँ द्वारा निर्मित होता है। तो निश्चित रूप से आप और आप जैसे सभी ऑफिसर्स अधिकारी जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों तक का त्याग देते हैं, उन सभी माओं को सलाम है जो कहीं ना कहीं हर बार ये कहती हैं कि जाओ जीतो जंग। कोई एक ऐसा नगमा जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, यहां मैं प्ले करना चाहूंगी।
0: तो माँ के बारे में बात आती है तो एक वो गाना है लुक्का छुपी बहुत हुई।
1: जी जी जी,
0: वो बहुत ही बेहतरीन गाना है। हाँ। एंड वो पिक्चर भी ऐसी है कि एकदम आमिर खान की पिक्चर है, जो आपको याद होगा मेरे ख्याल में।
1: जी जी, जिस तरह से जो मुद्दे उसमें उठाए
0: बहुत ही अच्छे मुद्दे थे। एंड आई थिंक वहीदा रहमान जी अपने, जब उनका कफन वापस आता है उसको देख के वो गाना गाती हैं।
1: हाँ हाँ।
0: जो फाइटर पायलट बचे थे उनके।
1: जी।
0: एंड मेरे जितने भी एयरफोर्स कोर्समेट्स हैं जिन्होंने देश के नाम अपने जान निछावर कर दी है, उनके लिए ये गाना, और देश की सारी माओं के लिए गाना।
1: वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने यहाँ पे कर दी है। और ये गाना भी उतना ही प्यारा है जो एक माँ के दिल के जज्बात और उसके जज्बात देश प्रेम से जुड़े हुए हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसके पास रहोगे तब भी याद करेगी, दूर हो जाओगे तब भी याद करेगी। तो उन सभी माओं को यहाँ पर कर्नल तन्वर ने यहाँ पर एक तरीके से सलामी दी है। माँ को सलाम करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी में करना चाहिए। सो वी आर प्रिविलेज टू हैव कर्नल तन्वर ओवर हियर हु हैज सच काइंड ऑफ, ये कहूँगी मैं, सोच है जिसके पास, जो अपनी माँ के लिए सोच सकता है वो देश की सभी माओं के लिए सोच सकता है।

0: आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और किससे बात करने के बाद ना जाने कहते हैं कि स्मृति के पन्नों को जब पलटा जाता है ना तो लगता है कि कुछ कहानियां हम जैसी हैं। और कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर से बात करते हुए ना जाने कितने फौजी जिस वक्त हमें सुन रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि जब हम अपनी किताब की स्मृति पन्नों को पलट रही हैं तो कर्नल तनवर को सुनने के बाद वो सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आपने जीवन के उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर कर दिया। खासतौर पर जब एक बच्चा एनडीए जाता है और उसके बाद फिर आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से वो देश के लिए अपनी सेवाएं देता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ कारवां बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और आपके लिए आपके घर में ही माहौल बन चुका था। एक बात बताइए कर्नल तनवर, मुझे पिताजी की यूनिफॉर्म कितना फैसिनेट करती थी आपको, क्योंकि आप रोज पिताजी को देखते होंगे उस यूनिफॉर्म में, तो उस यूनिफॉर्म ने कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या वो जगह बना दी थी?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे को बहुत ही डिस्टिंक्ट मेमोरी है। मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड स्टैंडर्ड में, फिरोजपुर में मेरे फादर पोस्टेड थे, और एक दिन वो स्कूटर था उस टाइम पे हमारे पास, स्कूटर में आम लेके आए थे, आम छोड़ के वापस ऑफिस जा रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे मेरे को ध्यान आया जिस जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी, मेरे को लगा हाँ मैं भी यही यूनिफॉर्म पहनूंगा। और तब से ही मेरा ये जज्बा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही एग्जाम दिया मैंने एनडीए का, और बारहवीं के बोर्ड एग्जाम से पहले ही मैंने सब क्लियर करके बैठा हुआ था। सो दैट मोटिवेशन मेरे पिताजी से ही, और वो फैसिनेशन यूनिफॉर्म का मेरे नाना और मेरे पिताजी से ही आया।
0: वाह क्या बात है। अगर अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो 26 सालों का जो सफर है, सफर नहीं हम कहेंगे इसको, हम कहेंगे ये तो कहीं ना कहीं आपके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर हम किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो वो संस्था कहीं ना कहीं हमारा विकास करती है। हम अपनी सेवाएं देते हैं, निश्चित रूप से हम भी कुछ अर्जित करते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको महसूस हो रहा होगा, जैसा कि कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, तो आज भी वो फीलिंग, वो अनुभूति विद्यमान है, आई एम स्टिल एन ऑफिसर। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका जो बैठने का पोस्चर है, आई कैन वेल प्रेडिक्ट यस आई एम टॉकिंग टू एन ऑफिसर। और कहीं ना कहीं आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं फीलिंग अभी भी साथ होगी।
1: बिल्कुल गीतिका, मेरे को हालांकि मैंने यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया है, लेकिन मेरी, मेरा सोच विचार, मेरे मोटिवेशंस, मेरे बिलीफ्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए। फौज में जो सिखाया गया है वो बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं, वो एक इंसान को हमेशा ठीक चीज ही करने को बुलाते हैं। आर्मी में बोलते हैं चूज द हार्डर राइट देन द इजियर रॉन्ग, और उसी वही ट्रेनिंग को मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद मान रखा है, और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी फौज मेरे को छोड़ सकेगी। हालांकि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मेरे यार दोस्त, मेरा सोच विचार, मेरा देश प्रेम, मेरे रेजिमेंट की तरफ मेरा प्रेम, मेरे स्क्वाड्रन की तरफ मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं मरते दम तक शायद फौजी ही रहूंगा।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। वो कहते हैं कि रग रग में जितने कतरे जो है लहू के बह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है, और आप जी रहे हैं उसे आज भी। लेकिन अगर स्मृति के पन्नों को फिर पलटा जाए और आपके उन मिशंस की ओर रुख किया जाए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल में एक घर बना रखा है, खुद भी याद करते होंगे, अकेले बैठते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, तो स्मृति पल आपको याद आते होंगे जहां जिंदगी के टफेस्ट डिसीजंस लिए गए, कौन से मिशंस थे जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं?
1: तो आई थिंक एक सबसे पहला जो मेरा मोटिवेटिंग इंस्टेंस रहा है वो मेरी स्क्वाड्रन में रहा है, हंटर स्क्वाड्रन में, मतलब कमीशन के बारे से पहले ही बात कर रहा हूं मैं, और ये शायद फोर्थ टर्म था, और हंटर स्क्वाड्रन एक स्क्वाड्रन होती है जिसमें जो बोलते हैं बहुत मुश्किल स्क्वाड्रन है, वहां पे फिजिकल कार्रवाई बहुत ज्यादा करते हैं। उस टाइम पे 12 स्क्वाड्रन होती थी, तो 12 में से सबसे टफ स्क्वाड्रन बोलते थे हंटर स्क्वाड्रन, और हंटर स्क्वाड्रन में 1.5 साल हो गए थे हमको, और हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, मतलब कोई चैंपियनशिप हमने नहीं जीती, खूब मेहनत करते थे हम भी, सुबह शाम दिन रात, सुबह 4 बजे भी, रात को 12 बजे भी, फिर हम, लेकिन हमारे पास ट्रॉफी नहीं आती थी। फिर किसी तरह मेहनत करके सब चीजें इकट्ठा हुई, हमको रियलाइज हुआ कि सिर्फ अंधाधुन भाग दौड़ करने से हम जीत नहीं पाएंगे, हमने कुछ दिमाग लगाया, और फिर हमने एक ड्रिल कॉम की ट्रॉफी जीती, और उस ड्रिल कॉम ट्रॉफी जीतने के बाद हमने एक गाना तब मशहूर होता था यहाँ के हम सिकंदर, उस गाने पे कर तकरीबन 2-3 दिन हमने बस उसी गाने पे डांस किया, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हमारा जो 1.5 साल का परिश्रम है, तपस्या है, वो फाइनली पूरी हुई। तो उससे मेरे को जिंदगी में बहुत सीख मिली कि कैसे अपने अपनी मेहनत को एक तरफ चैनलाइज करके, जीत की तरफ चैनलाइज करके जीत हासिल करना।
0: वाह क्या बात है, अगर आपने उस नगमे की बात यहाँ पे की है तो क्यों ना उसी नगमे को हमारे लिसनर्स तक जरूर पहुंचाया जाए और आगे का कारवां आप ही की जुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि भी बहुत कुछ है कर्नल तनवर से सुनने के लिए। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: संदेश सोल्जर्स के आज के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और कर्नल तनवर को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने मैं कितनी ही लोगों की कहानियां एक साथ पढ़ रही हूँ, एक साथ सुन रही हूँ, क्योंकि जो ताना बाना कर्नल तनवर ने यहाँ पिरोया है ना, आपके बहुत सारे बैचमेट्स कोर्समेट्स कहीं ना कहीं अगर वो सुन रहे होंगे या आगे चलकर हमें YouTube के माध्यम से सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि जैसे आपने उनकी दिल की व्यथा कह दी। कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, लेकिन यहाँ गंतव्य डेस्टिनेशन एक है और वो है देश प्रेम, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। सेवाओं में रहते हुए यानी कि भारतीय सेना में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है, लेकिन वो एक मिशन जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्या उसको आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे? एक ऐसा मिशन जिसके बारे में बार बार जब आप सोचते हैं तो कभी शायद आंखों में आंसू भी आते हो, दिल भर भी जाता हो, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
1: 97 जून में मैं कमीशन हुआ और 1999 जून, दो साल बाद कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस टाइम पे हम सब दो साल के यंग ऑफिसर्स थे और कारगिल की लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई थी। पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो हमको बचपन से सिखाया गया एनडीए में कि आप आगे आगे चलेंगे। तो उस समय मेरे काफी कोर्समेट्स ने अपने जान देश के लिए निछावर कर दी। उसमें मेरे एक मेरे क्लासमेट भी थे जो मेरे साथ स्कूल में थे, यहीं पे एपीएस धौलाकुआ में, अनुज नैयर, मेजर अनुज नैयर, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र भी हैं मेरे कोर्समेट मनोज पांडे। तो कई कोर्समेट्स थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी, और आप उनके साथ कॉलेज में थे। आप अगर इंडिया को कॉलेज माने तो जब आप उनका नाम पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे तो बहुत ही, कोई भी चीज आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती कि जब आपका एक चहिता हालांकि देश के लिए देश के काम में चला गया, लेकिन आप कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। तो कारगिल की का जो युद्ध था वो शायद हम सब कोर्समेट्स के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था, जिसने हमको असली जिंदगी के बहुत पास लाके खड़ा कर दिया, लड़ाई के पास लाके खड़ा कर दिया, और हमने उस युद्ध में विजय पाई। उस विजय दिवस हम मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। तो हमारे कोर्स ने जो उसमें सैक्रिफाइसेस दी वो रंग लाई, हमने जो पाकिस्तान के घुसपैठी थे उनको मार गिराया, खदेड़ दिया, हिंदुस्तान से वापस भिजवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें मेरे कोर्स 90th एनडीए 100 रेगुलर का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो शायद एक ऐसा मिशन था जो हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा।
0: जी, आपके लिए गौरवपूर्ण पल था कि आप वहां साक्षात कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ निर्णय तो होते हैं, आउटपुट रिजल्ट्स तो बाद में पता लगते हैं जब निर्णय सामने आते हैं, लेकिन उस क्षण जब एक ऑफिसर एक निर्णय ले रहा होता है उस वक्त उसके मन में क्या होता है, क्या सोचता है?
1: सारे जो निर्णय इन परिस्थितियों में अफसर लेता है उसमें सबसे पहले वो अपने देश के बारे में सोचता है, मिशन, कि मेरा मिशन क्या है, ये करने से क्या मेरा मिशन अकम्प्लिश होगा और क्या मेरे देश को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर उसमें उस में खड़ा हुआ वो डिसीजन, तो उसके बाद कि भाई मेरे जो जवान है, मैं एक लीडर हूं, मेरे नीचे जितने भी जवान हैं, जो मेरा कमांड है, चाहे वो एक सेक्शन हो, चाहे प्लटून हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एक बटालियन हो, उनके हित में ये है कि नहीं, और फिर आगे आगे ऐसे से करके उस तरीके से डिसीजन देते हैं। ये बहुत ही फेमस कहावत है, चेटवुड क्रेडो बोलते हैं उसमें, उसको, कि द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम एंड देन द ट्रूप्स यू कमांड एंड। तो मेरे को लगता है आपको वो इनग्रेन कर दिया, आपके अंतर आत्मा में उसको इनग्रेन कर दिया कि आप जो भी डिसीजन लेते हो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन, चाहे वो मिशन हो कोई गेम जीतना या युद्ध जीतना या कोई एक्सरसाइज में कार्रवाई करना, तो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन जीत, उसके बाद वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स। मेरे ख्याल में दिस इज हाउ यू आर मेड टू टेक डिसीजंस।
0: अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इमोशंस, भावनाएं, ये व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति में विराजमान है, हालांकि फोर्सेस आपको इस तरह से तैयार करती है कि आप हर भावनाओं के परे उससे ऊपर उठकर

0: काम करते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि उस वक्त कारगिल वॉर में खास तौर पर जब आपके साथी जा रहे थे, अलविदा कह रहे थे, उस पर निर्णय लेना और उस वक्त अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने सभी साथियों को एक छतरी के नीचे संभाल के रखना कितना महत्वपूर्ण और कितना जटिल होता है।
1: बहुत बहुत महत्वपूर्ण, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है गीतिका जी। चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, जब मौका आता है वो डिसीजन लेने का, जो कि डिसीजन का आउटकम या तो जीत हार में नहीं बोलूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे वो जीना या मरना के डिसीजन पे, तो वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक एस्प्री डी कोर होती है। जैसे मैं 93 फील्ड रेजिमेंट में था, तो वो 93 फील्ड रेजिमेंट को जीत प्राप्त करनी ही करनी है। तो जो ये मेरे ख्याल में जो आप पूछना चाहते हैं, वो क्या वो डर होता है, चाहे वो खौफ होता है, चाहे वो भय होता है, क्या वो आपके अंदर आता है कि नहीं आता। पर मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूं कि जब उस समय आप एक एज एन ऑफिसर कोई डिसीजन लेते हैं, तो ये भय, डर, खौफ काफी पीछे रह जाता है। सबसे पहले आपको अपनी रेजिमेंट की इज्जत सामने आती है कि भाई मेरी रेजिमेंट, मेरे कमांड, चाहे मैं एक बैटरी कमांडर हूं, चाहे जो भी हूं, उस कमांड को सक्सेस करना है। मैं और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो जिस प्रकार से मेरा देश मेरे को देखेगा, मैं उसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो चाहे मेरी जान जाए, लेकिन मैं ये कार्रवाई करके ही रहूंगा। और ये ऑफ कोर्स जैसे हमारी 3-4 साल की ट्रेनिंग है, जो रेजिमेंट में कार्रवाई होती है, यूनिट्स में कार्रवाई होती है, वो आपको ताकत देता है कि आप उस समय ये डिसीजन ले सके।
0: जी, तो कहीं ना कहीं सेना आपकी मानसिक और शारीरिक भी आपका मनोबल बढ़ाती है, आपकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरह से कर देता है कि आप हर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, थैंक्स टू द टफेस्ट ट्रेनिंग्स आई वुड से।
1: बिल्कुल गीतिका, आपने बिल्कुल ये शब्द मेरे मुंह से ही निकाल लिए कि यस, ये हमारी भारतीय सेना का के ट्रेडिशंस है, स्प्रिट कोर है, भारतीय सेना का जो सालों पुराना ट्रेडिशन है जीत हासिल करना, वही है जो आपको ये डिसीजंस लेने में मदद करता है।
0: जी जी, निश्चित रूप से। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सेना ने आपको तैयार किया है, आज भी आपको लगता है कि आप अपनी निजी जिंदगी में भी निर्णय ले पाते हैं आसानी से, क्योंकि आपके साथ जो मेहनत की गई वो अपने आप में ही सबसे अलग है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी कुछ जो जिस कार्य में मैं लगा हुआ हूँ, उसमें कई सिविलियंस के साथ मैं डील करता हूँ, और मेरे को रियलाइज होता है कि जो जिस भाव से वो अपने काम को अप्रोच करते हैं और हम जैसे अप्रोच करते थे, उसमें काफी फर्क है। जैसे फौज में अगर आपको एक काम मिल गया है, तो आप कुछ भी करोगे वो काम को सक्सेस करने के लिए, उस एम अचीवमेंट के लिए। लेकिन जब अभी मैं कॉरपोरेट में हूं, कॉरपोरेट में जैसे कार्रवाई होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ खुद का आ जाता है। लेकिन जब आप देश के लिए कार्रवाई करते हो ना गीतिका, तो खुद का स्वार्थ बिल्कुल पीछे रह जाता है, आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हो और सिर्फ देश और एम और मिशन के बारे में सोचते हो।
0: वाह क्या बात है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि सेनाएं तो हमें सशक्त करती ही करती हैं, हमें तैयार करती हैं कि कैसे हम मैदानी जंग में अपना दमखम साबित कर देंगे, लेकिन जब एक अधिकारी, एक सिपाही या जिस भी दर्जे पर एक व्यक्ति सेनाओं में रहकर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना योगदान दे रहा है, आप एज एन ऑफिसर कैसे सेनाओं को सशक्त करते हैं, ये अलग बात है। कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप सेनाओं में हैं, आप सेना में हैं, आपको भी सेना को सशक्त करना है।
1: बिल्कुल गीतिका, जैसे मैं जो जिस कारगिल के बारे में जब हमने बात करी, जो मैंने नाम लिए, चाहे वो परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, महावीर चक्र विजेता अनुज नैयर, उनका नाम हमेशा गौरवशाली रहेगा, हमेशा लेकिन इनके पीछे भी कई लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे को पता चला जब मैं सेना भवन में इन माय लास्ट टेन्योर पोस्टेड था, कि कैसे आर्मी हेडक्वार्टर में लोग निरंतर काम कर रहे हैं हमारी सेनाओं को कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करना, कि जो उनको हथियार, जो उनको असला, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो ड्रोन्स हों, चाहे वो टैंक्स हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ये आसान नहीं है इन चीजों को खरीदना। जब हमारी लड़ाई होगी, जब भी होगी, जिससे भी होगी, उनसे अच्छा सामान होना चाहिए हमारे, तभी हमारा सैनिक जीत पाएगा। इन सबको अरेंज करना, इन सबको सेना के लास्ट फौजी

0: तक पहुंचाना आसान नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल ऑल्सो जो कि अपने अपने हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे 416 इंजीनियर ब्रिगेड है, वहां पे ब्रिगेडियर राणा है, उदाहरण बॉस, वो काम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उनका कमांड लास्ट तक पहुंचे। इस प्रकार कई उदाहरण हैं कि जो लोग अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं ताकि सेना भी सशस्त्र हो।
1: जी, तभी हम हर बार आकाशवाणी के माध्यम से ये कहते हैं कि जब आप चैन की नींद सो रही हैं तो कोई है जो आपके लिए निरंतर मुस्तैद है, जो निरंतर आपके लिए काम कर रहा है। और भी होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन कर्नल तनवर, यहाँ पर आपने कुछ दोस्तों के नाम लिए, नैयर साहब का आपने नाम लिया यहाँ पर, वो तमाम दोस्तों का जिक्र किया जिन्हें आपने कहीं ना कहीं निजी रूप से खोया है, पर हम यही कहेंगे कि आज जो हम देश का परचम लहरा रहे हैं सिर्फ उन्हीं काबिल वीर ऑफिसर्स की वजह से और उन्हीं के नाम, ये अगला नगमा हमारी ओर से आकाशवाणी की तरफ से।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हर बार की तरह ये कार्यक्रम निजी रूप से मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि कहते हैं कि हम जीवन में जब जो प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें उस मंजिल की तरफ हमेशा आकर्षण होता है। वो लोग जिन्हें वो मंजिल मिली है वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, और आकाशवाणी के माध्यम से जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे दिग्गज हमारे बीच हैं जो अपनी बात हम तक साझा कर रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं, तमाम फौजियों की बातें साझा कर रहे हैं, उनकी कहानियां सुना रहे हैं अपनी कहानी के माध्यम से। कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो में, और बहुत सी बातें हमने की, आपके मिशंस के बारे में बात की, आपके अपने जो कोर्स किया एनडीए के, आपके कार्यकाल यानी कि एनडीए के दिनों की बात की। अब एक सबसे महत्वपूर्ण और निजी सवाल, वो पल जब आप अपनी अर्धांगिनी से मिले, सर्वप्रथम सबसे पहले तो ये बताइए कर्नल तनवर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गुस्ताखी माफ, आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज?
1: जी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। मेरी शादी, इनफैक्ट मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, मेरी वाइफ का परिवार भी भिवानी में है, एंड सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को मैंने देखा 2002 में, 2002 तकरीबन अप्रैल मई का महीना था, और मैं उस टाइम पे एक चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड था तवांग में, एंड वापस जा रहा था छुट्टी से, तो मेरी माँ ने बोला आ जाओ एक घर के पास, एक घर में चलते हैं। मैं कहा किस लिए, बोलते नहीं नहीं चलो चलो चलो, और वहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी वाइफ से मिला। माई वाइफ वॉज इन सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग,
2: सो स्वीट,
1: एंड तो पहली बार मेरे को काफ़ी डर गई वो मेरे को देख के, मैं तो अवसर था, वो शी वॉज अ यंग गर्ल, आई थिंक शी ऑलमोस्ट क्राइड, रोई थी वो एक्चुअल में।
2: अच्छा।
1: एंड तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, एक साल बाद हमारी एंगेजमेंट हुई, और एक साल बाद 2004 25 फरवरी को हमारी शादी हुई, और जिंदगी उसके बाद बदल सी गई। जैसे मेरी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती हैं कि अफसर तो मेरे को फौज ने बना दिया था, लेकिन मेरे को इंसान उसी ने बनाया।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आपने उनसे कहा होगा कि देखो मैं फौज में हूँ और बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत बार ऐसा होगा जब मैं तुमसे बहुत दूर जाऊंगा और हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे बीच वार्तालाप ना हो पाए, कॉन्वर्जेशन ना हो जाए, पर तुम धैर्य रखना, ऐसा कई बार कंसोल करना पड़ा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, माई वाइफ इनफैक्ट नीति, आई एम श्योर शी इज लिसनिंग टू मी, तो कई बार हुआ ऐसे जब फौज में शादी करना वैसे ग्लैमरस लगता है बट आसान नहीं है, तो हैट्स ऑफ टू ऑल आर्मी वाइव्स आल्सो, उनके हस्बैंड्स उनको छोड़ के देश के लिए दूर दराज इलाके में पोस्टेड होते हैं, पीछे से वाइफ बच्चों के साथ, कई अपने सास ससुर के साथ, कहीं पे भी कुछ घर संभालती हैं, आसान नहीं होता। ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ, हस्बैंड वापस आए, कैसे आए, चोट खा के आए या ना आए, ये अनसर्टेनिटी सहन करना आसान नहीं होता, तो हैट्स ऑफ टू देम। मेरे को याद है मैं एक कोर्स कर रहा था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग राष्ट्र राइफल्स में हो गई थी कश्मीर में, पहली बार पोस्टिंग फील्ड जा रहा था मैं शादी के बाद, तो काफी हताश हुई मेरी वाइफ कि तुमने जानबूझ के जाना चाहते हो उधर, बट हाँ किसी तरह हमने उनको मनाया, एंड टच वुड थिंग्स आर नाइस।
0: यही मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो दास्तान है, कहानी है, एक सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं, उन तमाम ऑफिसर्स की है जो अपनी फैमिली और साथ ही साथ देश के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है उसको कहते हैं ना बैलेंस करके चलते हैं, और इसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है, आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन काफी कारगर साबित होती है,
1: बिल्कुल
0: नित्य प्रति कार्य करती रहती है, तो कहीं ना कहीं हम सल्यूट करते हैं हमारी सेनाओं को जो ना केवल हमारे इस तरह के सैनिक अधिकारी कहते हैं उनको जन्म देती है, पर साथ ही साथ उनके परिवारों का भी खासा ख्याल रखती है, और हैट्स ऑफ टू द वाइव्स ऑफ द आर्मी पर्सनल्स जो अपने कहते हैं कि अपने वीर पति, अपने वीर सोलमेट के दूर होने के बाद भी सुचारू रूप से घर को चलाती है विदाउट एनी कंप्लेंट्स।
1: इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, फौज का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलती है, बहुत ज्यादा, जैसे मैं बता रहा था आर्मी स्कूल्स होते हैं, वहां पे आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, सब कुछ अंदर होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है जिससे हमारी कार्रवाई आगे घर गृहस्थी चलती रहती है।
0: कोई कैसी बात जो बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही इमोशनल हो आपकी वाइफ के संबंधित, जिसको आप बार बार जिक्र करते हैं, खासतौर पर तब जब उनसे दूर थे या सेवाओं में थे, तो उनकी बातें, कोई ऐसा गाना या उनका अपने इमोशंस दिखाने का तरीका जो आपको बहुत याद आता है अभी भी?
1: बहुत याद आता है, ऑफ कोर्स माय वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, बट शी इज ऑल्सो प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द वर्ल्ड.
0: क्या बात है.
1: तो हमारी जो लेडीज संगीत होता है उसमें मेरी वाइफ ने एक सॉन्ग पे डांस किया था, मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना. और जिस तरीके से उन्होंने डांस किया था, अभी मेरे ख्याल में कितने 22 साल हो गए हैं मेरे को, अभी तक मेरी मेरी आंखों के सामने वो नजर आना आ जाता
0: है. क्या बात है, यानी कि वो पल जिस
1: वो पल जिसमें उन्होंने डांस किया
0: और उनका नृत्य कहीं ना कहीं आपको लुभा गया. वाह क्या बात है. कहते हैं कि जीवन की छोटी बड़ी बातों में वो प्रेम छुपा होता है, तकरार होती है, और कहते हैं कि इमोशंस तो सब जगह एक जैसे हैं और वो भावनाएं ही हैं जिनकी वजह से हमारा जो इंडियन मैरिटल सिस्टम है वो आज

0: और हम भी हरदम हरपल बस आपके हैं, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। और करल तलवर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ निजी रूप से कि अगर मुझे मौका मिले ना इसी जिंदगी में रहकर कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकूँ, मैं कभी मना नहीं करूंगी। आप बताइए, डू यू वॉन्ट टू रीलिव दोस 26 ईयर्स अगेन?
1: गीतिका, ऑफकोर्स, अगर मैं अपने पिछले 26 साल फौज में जो मैंने बिताए हैं उनके बारे में सोचूं तो इतना फुलफिलिंग लाइफ रहा है। इंडिया में आपको क्या क्या नहीं कराते, सेलिंग, राइडिंग, प्लेन में चलाते हैं, मैंने पूरा देश देख लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा है जहां पे मैंने कुछ दिन नहीं बिताए हैं। विदेश दिखाया है, देश ने मेरे को रशिया भेजा, देश ने मेरे को फ्रांस में भेजा, मैंने लड़ाई लड़ी है दूसरे देश के साथ, टेररिस्ट के साथ, मैंने कई हजार करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से साइन किए हैं, मैंने जिंदगी के सबसे हसीन पल, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, जैसे कि इतनी सुंदर जगह जैसे तवांग, कश्मीर, कोयम्बतूर, इतनी सुंदर जगह पे जाके मैंने बिताए हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता किसी और उसमें। और एक एक बहुत ही डाइवर्स लाइफ मैंने देखी है। ये सिर्फ लाइफ ही डाइवर्स नहीं, जितनी इज्जत हमारे देश में हमारा देशवासी फौजियों की करता है वो इज्जत मिलना और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। और मैं यही बात हर देश के युवा को कहना चाहता हूं, मैं अपने बेटे को भी कहता हूं, मेरा बेटा भी अरिमर्दन सिंह तंवर

0: सेकेंड ईयर लॉ में है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, उसको भी मैं बोलता हूँ कि बेटा फौज में आप आके देखिए, देखिए वो कैसी जिंदगी आपको देता है, आपका कायाकल्प कर देता है, जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितना सेटिस्फेक्शन आपको फौज में सर्व करके मिल सकता है और कहीं नहीं कहीं भी नहीं मिल सकता।
1: जी बिल्कुल नहीं मिल सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में आपको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, वो पल, वो अविस्मरणीय पल आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया, एक ऐसी बात, एक ऐसा सम्मान जिसे आप दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे सबको, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है उन तमाम बच्चों के लिए जो आर्म फोर्सेस जाना चाहते हैं। वो पल कैसा था जीवन में?
0: आई थिंक मेरी जिंदगी का एक बहुत ही, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट वॉज वेन जब मेरे को प्रेसिडेंट ने विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। इससे क्या होता है, अवार्ड तो है ही, ये हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है
1: जी।
0: मैं अपने नाम को कर्नल KVS तंवर VSM लिख सकता हूँ, जो एक ऐसी उपलब्धि है बहुत कम लोगों को वो मिलती है। इसकी मेरे को किस लिए मिला, मैं सेना भवन में जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था तो मैंने कुछ काम किया देश के लिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और हमेशा मैं आभारी रहूंगा हमारे सीनियर्स का, मेरे जो सीनियर्स थे उस टाइम पे, ब्रिगेडियर होती था, ब्रिगेडियर होती थे, जनरल राजू थे, ब्रिगेडियर मोंगा थे, जनरल मोहंती थे, जिन्होंने मेरे को गाइड किया और ये मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान हुआ।
1: वाह क्या बात है। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र छात्राएं, आज तो हम देखते हैं किस तरह से युवतियां भी आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिल रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: आज के युवा को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि सेना जैसा माहौल, सेना जैसा लाइफ, सेना जैसा करियर आपको नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा करियर है जो सिर्फ ना सिर्फ आपकी किंतु आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा
1: जी।
0: आपको एक ऐसे राह में ले जाएगा जहां पे हर चीज आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। तो सारी युवाओं और युवतियों से मैं ये बताता हूं कि आर्मी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आसान नहीं है आर्मी में आना, बिल्कुल आसान नहीं है। आप मेहनत करें तो आप आर्मी में आए और देश सेवा कैसी होती है आप सीखें
1: जी। हम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन सभी तक पहुंचे हैं जो कहीं ना कहीं या तो अपनी कहानी दोहरा रहे हैं आपको सुनने के बाद, बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स सेवानिवृत्त हैं या अभी सर्विसेज में हैं, या वो लोग जो चाहते हैं कि हम सेना में रहकर सेवाएं दें, देशप्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित करें, उनके लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत सारे अनछुए पहलुओं को अपनी जिंदगी के यहां उजागर कर हमें कहीं ना कहीं सेनाओं से जोड़ दिया, देश प्रेम से जोड़ दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे संदेश हम पहुंचे हैं और सभी ने आपको सलाम कहा है, आपके जज्बे को सलाम कहा है। सभी दोस्तों से हम माफी मांगना चाहेंगे कि आप सभी के नाम हम जरूर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कर्नल तंवर को मैं आपके संदेश इस प्रोग्राम के बाद जरूर दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और एक बार हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तंवर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और हम तक इन प्यारी प्यारी बातों को साझा करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।

0: बैठक में विनिर्माण सामग्री और निर्माण क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि भारत में सेंट गोबिन की मजबूत उपस्थिति और निवेश देश के युवाओं के लिए अवसर सृजित कर रहे हैं। श्री मोदी ने लॉजिस्टिक्स कंपनी सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोडल्फ सास से भी मुलाकात की। इस दौरान समुद्री परिवहन, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया। श्री मोदी ने भारत में ग्रुप की मजबूत और बढ़ती उपस्थिति का उल्लेख किया। फ्रांस में भवन निर्माण की प्रमुख कंपनी सेंट गोबिन ने कहा है कि भारत उसके लिए महत्वपूर्ण विनिर्माण और निर्यात का केंद्र बन रहा है। पेरिस में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोनोवेद बजीन ने कहा कि चेन्नई के पास कंपनी की एक बड़ी विनिर्माण इकाई न केवल घरेलू मांग के साथ ही खाड़ी देशों, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया को भी निर्यात करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता से काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,317 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता की है। पिछले तीन दिनों में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान क्यूवेस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें स्थान पर है। यह भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 22 और 23 जून को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा और उच्च प्रतिनिधियों की बैठक में शामिल होंगे। ये दौरा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर हो रहा है। भारत 2026 में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय के अंतर्गत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 9:30 ग्रुप ए के मुकाबले में अमेरिका के अटलांटा में चेकिया का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। लॉस एंजलिस में रात्रि 12:30 से स्विट्जरलैंड का मुकाबला बोस्निया और हर्जेगोविना से होगा। आज सुबह कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान पर 3-1 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া শুনক হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি ৰিলে কৰা হ'ব দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে লভলীন নিগম। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सिंकोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मिंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग

0: प्रधानमंत्री गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस समय विवाटिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: For the 10th edition of VivaTech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
0: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
2: पत्तन रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मेट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले तीन दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। बम्बई शेयर बाजार का संविदित सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi today held a series of high-level meetings with leading French business leaders in Paris as part of efforts to deepen India-France economic and industrial cooperation. Speaking to Akashvani after the meetings, top executives highlighted the growing opportunities in India and announced plans for deeper engagement with the country. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that discussions focusing on manufacturing, artificial intelligence, sustainability and maritime infrastructure.
4: Saint-Gobain chairman and CEO Bernard Bazin said India is emerging as a major manufacturing and export hub for the Asia-Pacific region. He highlighted the company's investment in low-carbon technologies and energy-efficient building solutions to support India's net zero goals. Mistral AI CEO Arthur Mensch said the company is keen to strengthen support for Indian languages, expand AI research partnerships and explore greater collaboration on sovereign AI. He also indicated plans to expand the company's presence in India. CMS CGM Chairman and CEO Rodolphe

0: ইমানপুৰী শ্ৰোতাসকলে বিলকিছ ইনাম আৰু সংগীতবৃন্দৰ কণ্ঠত জিকিৰ শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া শুনক সংস্কৃতত বাতৰি, ৰিলে কৰা হ'ব দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी पेरिसनगरे प्रमुखैः फ्रांसदेशीयैः वाणिज्यनेतृभिः सह अनेकानि उच्चस्तरीयमेलनानि कृत्वा वीबाटेक 2026 इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भागं गृह्णाति। केन्द्रम् अस्मिन् आर्थिकवर्षे 26,000 किलोमीटर मितानां ग्रामीणमार्गाणां निर्माणाय 18,900 कोटिरूप्यकाणि विनियोजयति। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नीट यूजी इति पुनः परीक्षायै सर्वान् संबंधान अधिकारिणः जागरूकाः भवेयुरिति निर्दिष्टवान्। अमेरिका ईरान देशाभ्याम् आगामि षष्टि दिन पर्यन्तं व्यापक शांति संधि वार्तायां सहमतिः प्रकटिता। अपि च न्यूजीलैंड देशे FIH महिला नेशंस कप इति हॉकी स्पर्धायां भारतदलं उरुग्वे देशं 3-2 इति अंतरालेन विजित्य उपांत्यचक्रं प्रविष्टम्।

0: आर्थर मिंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमएसीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। सरकार ने कहा कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन LNG से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मीनाक्षी हुडा विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर चुकी हैं। मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi today attended the Viva Tech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. Speaking at the event, he highlighted India's rapid technological transformation, stronger India-EU cooperation, and the growing role of innovation in solving global challenges.
3: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
2: Earlier, Prime Minister held a series of high-level meetings with leading French business leaders in Paris as part of efforts to deepen India-France economic and industrial cooperation. Speaking to Akashvani after the meetings, top executives highlighted growing opportunities in India and announced plans for deeper engagement with the country. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that discussions focusing on manufacturing, artificial intelligence, sustainability and maritime infrastructure.
0: Saint-Gobain chairman and CEO Benoit Bazin said India is emerging as a major manufacturing and export hub for the Asia-Pacific region. He highlighted the company's investment in low-carbon technologies and energy-efficient building solutions to support India's net zero goals. Mistral AI CEO Arthur Mensch said the company is keen to strengthen support for Indian languages, expand AI research partnerships and explore greater collaboration on sovereign AI. He also indicated plans to expand the company's presence

0: Sales in India. CMS CGM Chairman and CEO Rodolf Sade said India is rapidly developing as a hub for green shipbuilding. He welcomed company's decision to build 6 LNG-powered vessels in partnership with Indian shipyards and said discussions with the Prime Minister also covered logistics, ship recycling and deep seaport development. The meetings underscored growing economic and technology cooperation between India and France. This is Mahesh Sopre, Akashwani News, Paris, France.
1: The Prime Minister also met CEO of Alstom, Martin Sion. In a social media post, the Ministry of External Affairs said that the discussions between them focused on opportunities in mobility and railway modernization. The Prime Minister is scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event this evening. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. During the meeting, the minister stressed the need to maintain the highest standards of integrity, transparency and efficiency in the examination process. He directed all concerned authorities to remain vigilant and ensure all necessary arrangements for the free and fair conduct of the re-examination. The government recorded substantial growth in the coverage and delivery of scholarship benefits to eligible scheduled caste or SC students during the current financial year. The Ministry of Social Justice and Empowerment said that under the post-matric scholarship scheme for SC students, the centre released more than 6,208 crore rupees, reaching over 47 lakh students. While in pre-matric scholarship scheme for SC and others, the government has disbursed more than 562 crore rupees, benefiting over 26 lakh students. The UAE has approved a major new regulation setting the minimum age for social media use at 15 years, a sweeping move aimed at strengthening child protection in the digital space. The decision was taken by the UAE Cabinet, chaired by Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. A landmark memorandum of understanding between the United States and Iran has come into effect, bringing an immediate halt to nearly 4 months of direct conflict and opening a 60-day window for negotiations on a comprehensive peace settlement. In FIFA World Cup 2026, Czechia will take on South Africa in Group A clash at Atlanta Stadium in United States tonight. The match is scheduled to begin at 9:30 p.m. Indian Standard Time. Later, Switzerland will face Bosnia and Herzegovina in Group B match at Los Angeles Stadium in United States at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
2: বাতৰি হৈতে মই সঞ্জীৱনী পাঠক এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে উপৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কাইলৈ লাডাখৰ লেহত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি পেৰিছত ফ্ৰান্সৰ আগশাৰীৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে উচ্চ পৰ্যায়ৰ এলানি বৈঠকত মিলিত হয় নীট ইউ জিৰ পুনৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ মূল্যায়নৰ বাবে আজি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ অধ্যক্ষতাত এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় মিজোৰামৰ একমাত্ৰ ৰাজ্যসভাৰ আসনখনৰ বাবে আজি মিজোৰাম বিধানসভাৰ মুঠ 40গৰাকী সদস্যৰ ভিতৰত 37গৰাকীয়ে ভোটদান কৰে আৰু বিশ্বকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত আজি নিশা হ'বলগীয়া গ্ৰুপ এৰ এখন খেলত চেকিয়া দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি উপৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কাইলৈ লাডাখৰ লেহত উপস্থিত হ'ব চলিত মাহৰ 21 তাৰিখলৈ এই কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলটোত প্ৰথম আনুষ্ঠানিক ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীত উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে লুকুং গাঁৱত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ প্ৰকল্পৰ অধীনত সীমান্ত অঞ্চলত উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ খতিয়ান উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে লগতে গ্ৰহণ কৰিব। পাছলৈ উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে যুদ্ধ স্মাৰকত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব। 21 জুন তাৰিখে শ্ৰীৰাধাকৃষ্ণনে লেহত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিব। এই অনুষ্ঠানত যুৱক যুৱতী, সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ জোৱানকে ধৰি বিভিন্ন সংগঠনৰ সদস্যই অংশগ্ৰহণ কৰি যোগৰ জৰিয়তে সামগ্ৰিক স্বাস্থ্য আৰু মংগলৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত অৰ্থনৈতিক আৰু ঔদ্যোগিক সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে আজি পেৰিছত ফ্ৰান্সৰ আগশাৰীৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে উচ্চ পৰ্যায়ৰ এলানি বৈঠকত মিলিত হয়। শ্ৰীমোদীয়ে ছেইণ্ট গোবনৰ অধ্যক্ষ তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া বেনইট বাজিনক সাক্ষাৎ কৰে। আলোচনাত সামগ্ৰী আৰু নিৰ্মাণ খণ্ডৰ সুযোগ, সেউজ উৎপাদন আৰু বহনক্ষম আন্তঃগাঁথনি সন্দৰ্ভত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়। সামাজিক মাধ্যমৰ এটা বাৰ্তাত শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে ভাৰতত ছেইণ্ট গোবনৰ শক্তিশালী উপস্থিতি আৰু বিনিয়োগে ভাৰতীয় যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে সুযোগৰ সৃষ্টি কৰিছে। ছেইণ্ট গোবনৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ভাৰতত অধিক বিনিয়োগ আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত মত ব্যক্ত কৰে। ইয়াৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আলষ্ট্ৰমৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া মাৰ্টিৰ চিয়নক সাক্ষাৎ কৰে। সামাজিক মাধ্যমৰ এটা বাৰ্তাত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে কয় যে আহ যাহৰ অত্যাধুনিক মাধ্যম আৰু ৰেলৰ আধুনিকীকৰণ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়। আলোচনাৰ সময়ছোৱাত শ্ৰীমোদীয়ে ভাৰতত আলষ্ট্ৰমৰ উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ আৰু শক্তিশালী উপস্থিতিয়ে ভাৰতৰ ৰেল খণ্ডৰ আধুনিকীকৰণ আৰু নিয়োগ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি কয় যে বিগত 12 বছৰত ভাৰতৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাহিনী এই দেশৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ উন্নয়নে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। কেন্দ্ৰীয় যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডাভিয়াৰ প্ৰকাশিত এটা লেখা আজি সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰি শ্ৰীমোদীয়ে এইদৰে মন্তব্য কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগী, দক্ষতা, উদ্ভাৱন আৰু উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ দেশখনে অমৃত প্ৰজন্মৰ বাবে তেওঁলোকৰ আকাংক্ষা বাস্তৱায়িত কৰাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডাভিয়াই বিগত দশকত ভাৰতে শিক্ষা, দক্ষতা, উদ্যমিতা, ক্ৰীড়া, স্বাস্থ্য আৰু অসামৰিক অংশগ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত
3: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
4: कई राज्यों में इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडुंगा में जो ये स्काई वॉक की आप चाहे बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहां मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काईवॉक वहां पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहां पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काईवॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-2-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो या बाद में होटल में उसकी चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
3: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
4: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब ये यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वैरायटीज हैं, चाहे वो लैकडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है, इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
3: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बने, इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में, और सरकार इसे कैसे देख रही है?
4: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में, बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सके। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
3: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है, और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है, और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
4: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है, और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं, और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खासतौर पे लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं, और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए, और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
3: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
4: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम passive diplomatic orientation to a proactive economic and strategic engagement with the East. And here, Northeast is lying at the heart of the Act East policy. And it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
3: So, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे जो आज हमारे जो आठ राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक

0: इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं।
1: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में, माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा, वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इंप्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ तो हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में। तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सब का इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में मैं पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड व्हेन दे डू दैट they also retain their unique identity.
0: Thank you so much, sir.
1: Bahut bahut dhanyawad.
2: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद आर मुकुंदन, प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। Interviewer is Shishir Sinha, journalist.
4: Namaskar. Modi government is completing 12 years. During those 12 years, we have seen various ups and downs in the Indian economy. We have seen challenges like COVID. We have seen challenges like Russia-Ukraine war and now the current West Asia crisis. Despite all those things, Indian economy has grown more than 7% during those 12 years. And now the expectation is it will grow at much faster rate. So what kind of role India Inc. has to play in this entire growth journey? To talk about all those things, we have with us Mr. R. Mukundan, President, Confederation of Indian Industry. Mr. Mukundan, thank you very much for joining us from Morocco. And it's a pleasure to have you on the show.
5: Thank you very much.
4: Mr. Mukundan, my first question to you, how do you assess the Indian economy of last 12 years?
5: So I think a lot of positives happened. And if I were to say, what are the way I would to sort of contextualize what has happened? You've already given the environment. There were challenges like COVID. External environment is very volatile. There's a challenge of AI coming in. What I think we have achieved is to have a more frictionless economy. There is less friction. And I'll explain what I mean by that. The whole digital payment, Jan Dhan, Jam Trinity, if you really look at it, it has reduced the friction in the economy. Also, the GST, for example, it's a landmark reform. It has ensured that, again, the friction and transaction of goods. If you recall, in the past, trucks would be waiting at state borders for hours. Today, actually, you can reach any part of India and has reduced logistic costs. I think the first F which they have achieved is to get to more frictionless economy. Second, I think what India has done is to use force multiplier, multiple force multiplier. And I'll give you examples. One is, for example, if you look at the way we have handled the PLI scheme, the defense exports, for example, 33 times from what it was at the beginning. So it's not a small feat to start from where we are and we are 33 times. People don't talk about it. And from a net importer, I think we are also now a good exporter of the defense equipment. Mobile phone, for example, has grown 6 times mobile assembly. Again, of course, aided by PLI scheme. But these schemes were important. They were thought of at various times.

0: ভজন শুনিলে এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খেন্তেক পাছতে অৰ্থাৎ 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9 নিউজ এট 9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সে সমাচাৰ সন্ধ্যা কে সাথ মই লভলীন নিগম। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
2: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
2: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
3: सेंटकोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मिंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी का परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
5: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
6: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
4: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
7: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था, हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
4: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: स्कीम के टेली लॉ नए बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.telly-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at VivaTech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. Four Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the VivaTech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said, technology can lead to progress only when it's democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all.
4: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision.
3: The Prime Minister highlighted that in the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology.
4: In the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system